मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: और आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6

0: विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना। एकता, समर्पण और त्याग से जीवन की फुलवारी चंदन की तरह महकती है।

0: शीश पर माँ गंगा विराजमान हैं, गले में सर्प की माला, हाथ में डमरू, शिव शंकर के अविनाशी रूप का दर्शन करने से मन शांत होता है, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है। प्रभु के श्री चरणों में हमारा शत शत नमन।
1: जो भी प्राणी भगवान शिव की भक्ति सच्चे मन से करता है, बड़े दयालु हैं।

ये चंचल मन सदा श्री हरि का नाम स्मरण करता रहे, ये जिह्वा राम नाम का गुणगान करती रहे। हे प्रभु, यही बारंबार विनय है।

हे मुरली मनोहर, आपकी मुरली की धुन सुनकर गोपियां दौड़कर आती थीं। हे प्रभु, आपकी मुस्कान और सभी के लिए प्रेम सभी ब्रजवासियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं था। श्री हरि की लीलाओं का वर्णन करना उनकी कृपा के बिना संभव नहीं। हे जगत के पालनहार, हमें अपनी शरण में ले लीजिए।

0: कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के आगरा केंद्र से किया जा रहा था, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय प्रातः के 6:25 हुए हैं। चिंतन में आइए सुनते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार।
1: यह विशाल भूमि, असीम आकाश, उदार समुद्र विश्व की एकता के प्रमाण है। जिन्होंने मानव को विकास की सीढ़ियां चढ़ते देखा, राज्य बने बिगड़े, सभ्यताएं पनपी नष्ट हुई, भाषाएं रूप बदलती रहीं, समाज इतिहास बनता रहा, किंतु इन सब के बीच कुछ ऐसा है जो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यही है चेतना का सत्य, आत्मा की पूर्णता का सत्य। वही दर्शन जीवंत और वांछनीय है जिसमें जीवन को समग्रता देने की क्षमता है। हम इतिहास के मौन दर्शक नहीं, सहभागी हैं। आज यदि कोई समाज, कोई राष्ट्र अपनी सीमित सापेक्ष उन्नति को खोजेगा तो निराशा ही हाथ लगेगी। बिना विश्व कल्याण के आत्म कल्याण तो संभव है ही नहीं। विज्ञान की सहायता से विश्व सिमट गया है, अर्थव्यवस्था से पारस्परिक निर्भरता बढ़ी है और कला संस्कृति से आपसी संवाद, एक दूसरे को जानने समझने की संभावना जगी है। अब राष्ट्रवाद सर्वोच्च संकल्पना नहीं रही, उसका स्थान विश्व समुदाय ने ले लिया, जिसके साथ हमें अपने आप को जोड़ना है। हम एक नए विश्व में जी रहे हैं जहां मस्तिष्क और हृदय को बदले बिना जीवन असंभव है। हमें अपने दिमाग के छोटेपन में और छोटे समूहों के प्रति निष्ठा की भावना से मुक्ति पानी होगी। धर्म केवल मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे में नहीं, वो तो एक रचनात्मक उदार व्यक्ति है। यह तो संदेह नहीं कि भारतीय धर्म की प्रज्वलित रूप संकीर्ण और सीमाबद्ध है, पर क्या हुगली अथवा कानपुर में प्रदूषित गंगा को देखकर गंगोत्री में गंगा के सरल तरल निर्मल रूप पर शंका की जा सकती है? कुछ व्यक्तियों अथवा समूह के द्वारा धर्म के दुरुपयोग के कारण विश्व में एक समय धर्म की आलोचना हुई। वाल्टेयर ने चर्च एवं पादरियों की हंसी उड़ाई, मार्क्स ने इसे निजी पूंजी के पवित्र करने का शैतानी प्रयास माना। धर्म ही दर्शन है, दर्शन ही धर्म है, जो हमें क्षुद्रताओं से ऊपर उठाना सिखाता है। वो एक प्रकार की सामाजिक पूर्णता का प्रयास है। केवल इतना ही नहीं, ये धर्म ही मानव चेतना का प्रतीक है, सभी प्राणियों के आंतरिक सत्य का आधार है। देह और अंतःकरण की दृष्टि से व्यक्तियों में भिन्नताएं हैं, पर इन वही छिलकों के कहते ही चैतन्य रूप समानता परिलक्षित होने लगती है। उपनिषदों पर आधारित समानता का जयघोष यदि आदि शंकराचार्य की भांति किया जाए तो कोई किसी का शत्रु नहीं, सभी समान हैं, सभी धर्म एक हैं और कोई किसी का शत्रु नहीं है। सत्य पहचानने के लिए विज्ञान की प्रयोगशाला के सभी उपकरण अक्षम हैं। वे मशीन बना सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, उपकरण बना सकते हैं, पर अनुभव करने वाला मानव तो नहीं बना सकते। अन्यथा विज्ञान बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ी, पर सुख शांति क्यों नहीं बढ़ी? धरती से भूख, बेकारी, बीमारी, अशिक्षा जैसी समस्याएं क्यों नहीं समाप्त हुई?
0: श्रोताओं, चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

सबसे पहले जानकारी लीजिए इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। प्रातः 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर महेंद्र कटियार की वार्ता, गर्मी की जुताई से लाभ। स्वास्थ्य चर्चा में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर राजीव शर्मा की वार्ता, विषय होगा कंधे का जाम होना, कारण और उपचार। ये वार्ता आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम आसपास। 8:45 पर कार्यक्रम गीतांजलि में आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। पुराने फिल्मों से गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा में 9:25 पर। 9:45 पर कार्यक्रम लोक संगीत में आज कलाकार होंगी मनीषा देवी। 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसरिता। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार केंद्रित होगा चरित्र अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी पर। 11:30 पर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत केंद्रित होगा विश्व वर्षावन दिवस पर, विषय होगा जलवायु संरक्षण के लिए वर्षावन का महत्व। दिन में 12:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी नए तराने, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा दिन में 12:30 पर। 1:15 पर कार्यक्रम घर संसार में चर्चा का विषय होगा सदाबहार वर्षावन, मेरी माटी मेरा देश क्रम में आप सुनेंगे रेगिस्तान का जहाज धरती का साथी विषय पर। फैशन ब्यूटी में आपको बताएंगे हर्बल कॉस्मेटिक्स को दें प्राथमिकता। साथ ही आप सुनेंगे शिवानी चौहान की वार्ता सोशल मीडिया दोधारी तलवार विषय पर। इसके साथ आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम घर संसार का प्रसारण समय रहेगा दिन में 1:15। 1:45 पर सुगम संगीत में आप सुनेंगे रीता गांगुली के गाए गीत। 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत, इसमें आप सुनेंगे विदुषी शोभा गुल्टू की गाई ठुमरी। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का प्रसारण समय रहेगा दिन में 2:45। दिन में 3:00 आनंद लीजिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत कुंजन में।

और अब रूपरेखा सुनिए सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों की। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या में फिल्मी भजन। कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:30 पर आज चर्चा होगी वर्षावनों का महत्व विषय पर। नई पहल में जानेंगे जल संचय जन भागीदारी JSJB पहल के बारे में। इतिहास के पन्नों से बात होगी अब्राहम समझौता के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे मनस्वी आर्य की वार्ता, विषय होगा प्रमुख वायु प्रदूषक और उनका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। चलते चलते क्रम के अलावा आपको सुनवाएंगे कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम ग्राम्यालोक में चर्चा होगी फार्मर रजिस्ट्री से लाभ विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे अपनी मिट्टी पहचाने विषय पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से अनंद्र सिंह की बातचीत। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और कुछ लोकगीत। कार्यक्रम ग्राम्यालोक का प्रसारण समय रहेगा शाम 6:00। 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा जल है तो हम हैं। सेहतनामा, घरेलू नुस्खे, आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, आज की पाती के अलावा आप सुनेंगे फिल्मी गीत। ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:30 पर। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता, करें योग रहे निरोग विषय पर। 7:31 पर प्रसारित होगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, शामी गजल। ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा रात 8:00। 8:30 पर प्रसारित होगा चित्रपट संगीत।

9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10 बजे आनंद लीजिएगा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का। 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडकर।

दीर्घ काल तक राज्य करते हुए मनु को जब वृद्धावस्था का आभास मिला तो उनके मन में ग्लानि हुई कि हरि के भक्ति बिना जीवन अकारथ बीत गया। अतः स्वेच्छा से पुत्र को राजकाज सौंपकर पत्नी शत्रुपा के साथ उन्होंने वन की राह ली। वर्षों के तीर्थाटन तथा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद दंपति को प्रभु के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। ऐसा अद्भुत और अनुपम रूप मनु दंपत्ति की आंखें जैसे आघातीन न थीं। दंपत्ति की भक्ति, समर्पण तथा कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर प्रभु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा, लेकिन उनके साक्षात दर्शन से ही मनु शत्रुपा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थीं। अतः मांगने को रहा क्या था। फिर भी मन में एक लालसा थी जिसका पूरा होना सहज भी था और कठिन भी, अतः उसे प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। जब प्रभु ने बार बार उन्हें निसंकोच हो मन चाहा वर मांग लेने को कहा तो मनु बोले, हे नाथ, मेरी सच्ची साध है कि मुझे आपके समान ही पुत्र प्राप्त हो। मनु की प्रीति देख करुणा निधान बोले, ऐसा ही होगा, किंतु हे राजन, अब मैं अपने सामान दूसरा कहां खोजूंगा, अतः स्वयं आकर ही आपका पुत्र बनूंगा। इसी प्रकार शत्रुपा को भी उनका मन चाह वरदान प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है

0: कार्यक्रम खेती की बातें, इसमें आइए सुनते हैं महेंद्र डॉक्टर महेंद्र कटियार की वार्ता। विषय है गर्मी की जुताई से लाभ।
1: जुताई का इतिहास बहुत पुराना है। आदिकाल में मनुष्य भूमि को लकड़ी, हड्डी तथा पत्थर के बने मोटे औजारों से खोदकर फसलें उगाता था। कई शताब्दियों के बाद उसने घोड़ों, बैल आदि पशुओं को पालतू बनाकर लकड़ी के यंत्रों द्वारा उनसे खेती के काम में सहायता लेनी प्रारंभ की। लोहे के आविष्कार के साथ साथ जुताई गुड़ाई के ऐसे यंत्र बनने लगे जिनसे खेती के काम में अधिक सुविधा होने लगी। आज मिट्टी पलटने वाले हल, निराई गुड़ाई के यंत्र, कल्टीवेटर, हैरो आदि अनेक कृषि यंत्रों ने खेती में क्रांति कर दी है। कुछ प्रारंभिक अमेरिकी वैज्ञानिकों का मत था कि जुताई से भूमि की अच्छी खुदाई हो जाती है, जिससे पौधों की जड़ें सुगमता से काफ़ी गहराई तक जा सकती हैं और उनके संपर्क में अधिक भूमि के आने के कारण पानी तथा पोषक तत्वों का अवशोषण सुगमता से होता है। जुताई फसल उगाने के लिए मृदा को तैयार करने की वह पद्धति है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। गर्मी की जुताई रबी की फसल कटने के बाद शुरू होती है तथा वर्षा प्रारंभ तक होती है। यह अप्रैल से जून तक चलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई में दो बातें ध्यान रखते हैं। पहला है, जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। दूसरा, मिट्टी के ढेले बड़े बड़े रहें, यह भुरभुरी ना होने पाए, अन्यथा गर्मी में तेज़ हवा मिट्टी के छोटे छोटे कणों को उड़ाकर ले जाती है। गर्मी की जुताई से अनेकों लाभ हैं, जैसे बहुत से कीट फसल के अवशेषों में रहते हैं, मक्का का बेधक कीट, वाइट ग्रब, दीमक आदि। गर्मी की जुताई के समय इन कीड़ों के अंडे, प्यूपा तथा लार्वा आदि भूमि की सतह पर आकर नष्ट हो जाते हैं तथा वे चिड़ियों आदि के द्वारा खा लिए जाते हैं। जुताई से मिट्टी में कीड़ों के आश्रय भी टूट जाते हैं तथा बहुत से कीट जुताई आदि क्रियाएं करते समय ही मर जाते हैं। इसी प्रकार फसलों की कुछ हानिकारक फफूंदियाँ, जीवाणु आदि भी सड़े गले फसल अवशेषों अथवा मिट्टी की सतह पर पड़े अन्य जैव पदार्थों पर पनपते रहते हैं, जो फसल में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे चना तथा मसूर के झुलसा रोग को फैलाने वाली फफूंदी व गेहूं में रोग फैलाने वाली फफूंदी। इससे रूट रॉट, पौध अंगमारी, तना सड़न आदि रोग भी लग जाते हैं। खेत में मक्का के डंठलों के पड़े रहने की स्थिति में जब गेहूं या जौ को बो दिया जाता है तो इन डंठलों में फफूंदी की उपस्थिति के कारण अनाजों में बीमारी लग जाती है। इससे गेहूं या जौ उगाने के लिए इन डंठलों को गहरी जुताई करके मिट्टी में दबा देना चाहिए। फसलों को खरपतवारों से जल, प्रकाश और पोषक तत्वों के लिए संघर्ष में सबसे अधिक हानि उठानी पड़ती है। साधारणतया फसलों को इन पदार्थों की आवश्यकता एक निश्चित अनुपात में होती है, परंतु यदि इनमें से कोई एक चीज़ खरपतवारों द्वारा उपभोग कर ली जाती है तो अन्य दो चीज़ें फसलों को उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी फसलें इनका उपयोग नहीं कर पाती, जिससे फसलों की उपज घट जाती है तथा कुछ हानियाँ होती हैं। प्रयोगों द्वारा पता चला है कि खरपतवारों के कारण फसलों की उपज में लगभग 15-20% तक की कमी आ जाती है। खरपतवारों के कारण फसल उत्पादन के खर्च में भी बढ़ोतरी होती है, जिससे शुद्ध लाभ कम हो जाता है। फसल की क्वालिटी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सत्यानाशी के बीज यदि सरसों में मिल जाएँ तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरह जंगली प्याज व लहसुन आदि के जानवरों के हरे चारे में मिल जाने पर उनके दूध में दुर्गंध आने लगती है। कांटेदार खरपतवारों के भेड़ बकरियों के बालों में चिपकने से ऊन व बालों की क्वालिटी घट जाती है। कई खरपतवार रोग व कीटों को शरण भी देते हैं। फसलों के खेत कट जाने के बाद विभिन्न प्रकार के कीट, फफूंदी आदि अपना शेष जीवन चक्र खरपतवारों पर पूरा करके नई फसल पर आक्रमण करने की तैयारी करते हैं, जैसे जंगली जई, गेरुई को तथा हिरण

0: खुरी कद्दू वर्गीय कीड़ों को परपोषित करते हैं। इनसे स्वास्थ्य को भी हानि होती है, जैसे सत्यानाशी के बीज से बेरी बेरी रोग उत्पन्न होता है। खरपतवार उन्मूलन में काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है। मृदा में जल अत्यंत आवश्यकीय होता है, क्योंकि पौधे अपना भोजन घोल के रूप में लेते हैं। यदि मृदा में जल नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको शोषित करने के लिए उचित घोल नहीं बन पाएगा। गर्मी की जुताई के बाद तेज धूप में मिट्टी के सूख जाने से उसकी जल शोषण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह वर्षा का अधिक से अधिक जल शोषित करती है, जो फसलों के लिए लाभदायक रहता है। गर्मी की जुताई से मृदा के कणों की बनावट भी सुधरती है तथा कणों का लगाव भी सुधरता है, क्योंकि जुताई में मृदा को स्थानांतरित किया जाता है, जिसके कारण कण अपनी स्थिति बदल लेते हैं तथा अच्छी स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। मृदा में कणों की बनावट तथा सजावट का पौधों की वृद्धि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। इसी तरह जुताई से मृदा में वायु संचार भी बढ़ता है, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। उचित वायु संचार से पौधों की जड़ों तथा लाभदायक सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और हानिकारक गैसें बाहर निकलती रहती हैं। पौधों की जड़ों का फैलना व बढ़ना भी भूमि में उचित वायु संचार पर ही निर्भर करता है। बिना जुते खेत की मिट्टी काफ़ी कड़ी रहती है और उसकी जल अवशोषण क्षमता भी काफ़ी कम होती है। जब वर्षा होती है तो उसमें पानी अच्छी प्रकार प्रवेश नहीं कर पाता और ढाल की तरफ बहने लगता है। इसके साथ मिट्टी के बहुत से कण भी बह जाते हैं। मिट्टी की ऊपर की हल्की सी परत, जो कि बहुत उपजाऊ होती है तथा वर्षों के बाद बन पाती है, पानी के साथ बह जाती है। जुताई करने से मिट्टी मुलायम हो जाती है तथा उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाने से वर्षा का पानी उसमें सुगमता से प्रवेश कर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है। अंत में मैं किसान भाइयों को गर्मी की जुताई से होने वाले मुख्य लाभों के बारे में जानकारी कराना चाहूँगा। जैसे गर्मी की जुताई से ज़मीन के हानिकारक जीवाणु ऊपर आकर कड़ी धूप से नष्ट हो जाते हैं, और इनकी रोकथाम में रसायनों का प्रयोग बहुत कम करना पड़ता है। साथ ही रसायनों से शरीर को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकता है। गर्मी की जुताई से तेज़ धूप के कारण ज़्यादातर खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, जिससे इन पर अतिरिक्त व्यय नहीं करना होता है और उसमें कमी आती है। फिर गर्मी की जुताई से मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाती है, जिससे उसकी जल शोषण क्षमता भी बढ़ जाती है तथा वह वर्षा के पानी को अधिक मात्रा में शोषित करती है। इससे प्रकाश और वायु का भी संचार अच्छा होता है, जिससे लाभदायक सूक्ष्म जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और उनका विकास अच्छा होता है। मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ने से मिट्टी का कटाव कम होता है तथा भूमि उपजाऊ बनी रहती है, और अंत में भूमि की दशा में भी सुधार होता है।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गर्मी की जुताई से लाभ विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर महेंद्र कटियार।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: युः स्पर्धा तत्र द्वि-द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्र शामिल हैं।
2: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 की परीक्षा शुरू करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड में इस महीने की 30 तारीख तक प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF और सहायक प्रोफेसर के पदों तथा PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर महिला और पुरुष क्रिकेट दोनों में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

0: सुनते हैं डॉक्टर राजीव शर्मा की वार्ता, विषय है कंधे का जाम होना, कारण और उपचार।
1: कंधे का दर्द एक बहुत ही आम शिकायत है। ऐसा माना जाता है कि कंधों के आसपास जोड़ों में सूजन आने के कारण यह दर्द होता है। ऐसे दर्द में कभी कभी कंधे सुन्न भी पड़ जाते हैं। यह स्थित कई बार महीनों तक रह जाती है। हमारा कंधा 3 हड्डियों से बना होता है। ऊपरी बांह की हड्डी हुमरस, कंधे की हड्डी स्कैपुला और कॉलर बोन असली। ऊपरी बांह की हड्डी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा कंधे के ब्लेड के एक गोल सॉकेट में फिट रहता है। यह सॉकेट ग्लेनॉइड कहलाता है। मांसपेशियों और टेंडन का संयोजन बांह की हड्डी को कंधे के एक सॉकेट में केंद्रित रखता है। यह ऊतक रोटेटर कफ कहलाते हैं। ज्यादातर कंधे की समस्याओं का प्राथमिक कारण रोटेटर कफ में पाए जाने वाले आसपास के कोमल ऊतक का उम्र के कारण प्राकृतिक रूप से बिगड़ना है। कंधे में होने वाली इस जकड़न को फ्रोजन शोल्डर नाम से जाना जाता है। इस दर्द का कारण आसानी से पता नहीं चलता। फ्रोजन शोल्डर में कंधे की हड्डियों को मूव करना मुश्किल होने लगता है। कंधे का दर्द दिन भर की गतिविधियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या पुरुषों की तुलना महिलाओं में दोगुनी पाई गई है। रोटेटर कफ में तकलीफ की स्थिति 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों में ज्यादा देखी जाती है। कंधों का सुन्न पड़ जाना, कंधों को घुमाने में असमर्थता महसूस करना, रात में कंधों में तीव्र दर्द होना, कंधों में होने वाली जकड़न मुख्यतः इन कारणों से हो सकती है। डायबिटीज के मरीजों में, हृदय समस्या से ग्रसित लोगों में, पार्किंसंस बीमार के मरीजों में हो सकती है। गर्दन में होने वाली सर्वाइकल डिस्क की समस्या भी ऐसे दर्द का कारण हो सकती है। वो मरीज जिन्हें कंधों पर किसी प्रकार की चोट लगी हो या कंधों की किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, उनमें फ्रोजन शोल्डर की आशंका अधिक होती है। कंधों की जकड़न में अक्सर मालिश या सेक से आराम मिलता है। अगर इसमें आराम नहीं मिलता तो यह उपाय अपनाने चाहिए। दर्द को अनदेखा न करें, यह लगातार हो तो डॉक्टर को दिखाएं। सामान्य कंधों में दर्द निवारक दवाओं से ही राहत मिल जाती है। ऐसा दर्द कंधों में सूजन के कारण होता है, इसलिए सूजन कम करने वाली दवाएं भी राहत पहुंचा सकती हैं। लेकिन दर्द की दवाओं का प्रयोग केवल आपात स्थिति में डॉक्टर की सलाह से करें। अगर फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा समय पर नहीं की गई तो कई बार मरीज को पूरा जीवन इस समस्या के साथ बिताना पड़ सकता है। कंधों को गर्म या ठंडा सेक दें। फ्रोजन शोल्डर की चिकित्सा का सबसे अच्छा उपाय फिजियोथेरेपी माना जाता है। फिजियोथेरेपी में कंधों में खिंचाव उत्पन्न कर कंधों को दोबारा गतिमान बनाना होता है। ऐसा करने के लिए कंधों के विभिन्न बिंदुओं को व्यायाम द्वारा धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास किया जाता है। इस स्थिति में फिजियोथेरेपी की मशीनों जैसे शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, पुली तथा शोल्डर व्हील की मदद और मशीनों की सिकाई से जकड़न को कम किया जाता है। शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी व पुली तथा शोल्डर व्हील की मदद और मशीनों की सिकाई से जकड़न को कम किया जाता है। कंधे को जकड़न से खोलने के लिए कुछ व्यायाम की मदद ली जा सकती है, जो कि कंधे की जकड़न को कम करने व मूवमेंट को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले दीवार के सामने खड़े होकर दीवार के सहारे हाथ को ऊपर तक ले जाएं, फिर उसी प्रकार उसे वापस नीचे की तरफ लाएं। इस क्रिया को एक बार में कम से कम 20 से 25 बार रिपीट करें और धीरे धीरे हाथ को थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। इसके बाद अगली कसरत पीठ दीवार की तरफ करके खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सामने से उठाएं। इस प्रक्रिया को 20 से 25 बार करें। इसके बाद दोनों हाथों को साइड में सीधा करके ऊपर वहां तक ले जाएं जहां तक वह आसानी से जाए और धीरे धीरे उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। 10 से 15 बार इसे रिपीट करें। दीवार से थोड़ा दूर खड़े होकर हाथ सीधा करके उसे गोल घुमाने की कोशिश करें तथा उसके बाद गोले का आकार थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करें। इस प्रक्रिया को करीब 20 बार करें। फिर ठीक उसी प्रकार हाथ को उल्टा घुमाने की कोशिश करें। अगर थकान हो तो बीच बीच में थोड़ा आराम देकर फिर से करें। सीधा खड़े होकर हाथ को पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करें तथा इसे बार बार करने की कोशिश करें। इन सारी कसरत को दिन में 2 से 3 बार करें। जिन लोगों को कमर या घुटने की तकलीफ रहती है उनको यह कसरत बैठकर करनी चाहिए, जिससे उनके पैरों या कमर पर वजन ना पड़े। जिन लोगों को कंधों में तकलीफ नहीं है वो भी कंधे को सक्रिय रखने के लिए ये सारी कसरतों को करें, जिससे आगे आने वाले समय में कंधे के दर्द अथवा जाम होने की परेशानी से बचा जा सके।

स्वास्थ्य चर्चा में अभी आप सुन रहे थे कंधे का जाम होना कारण और उपचार विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर राजीव शर्मा। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देश गान।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला
1: सह सको महात्मा गांधी। मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर। अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम। जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
1: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया।
0: इस अवसर पर लखनऊ के जनभवन में

0: महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है। इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट UG की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई सम्पन्न। करीब

0: 3 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं हैं आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

कार्यक्रम में सबसे पहले खोए हुए व्यक्तियों की सूचनाएं सुनिए। क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार अर्पिता उर्फ बिट्टू पुत्री संजीव कुमार निवासी करपिया थाना बेवर जनपद मैनपुरी 26 अप्रैल 2026 से घर से लापता हैं। आयु 23 वर्ष कद 5 फुट 2 इंच रंग गेहुआ चेहरा लंबा है। ये पीले रंग की टी शर्ट और लोअर पहने हुए हैं। श्रोताओं अर्पिता के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें।

एक और सूचना सुनिए। क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार गीता देवी पत्नी आनंद कुमार निवासी ग्राम नवीगंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी 12 मई 2026 से घर से लापता है। आयु 38 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। गीता देवी नीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें।

क्षेत्राधिकारी मैनपुरी से प्राप्त एक और सूचना के अनुसार अनुराधा पुत्री हरेंद्र सिंह निवासी बड़ेपुर थाना बेवर जनपद मैनपुरी 13 मई 2026 से लापता है। आयु 20 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इनके गाल पर तिल का निशान है। हरे रंग की कुर्ती व नीला जींस पहने हुए हैं। श्रोताओं, अनुराधा के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर क्षेत्राधिकारी मैनपुरी को सूचित करें। ये थी खोए हुए व्यक्तियों की

रेलवे ने लालकुआ बलसाड़ स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन लालकुआ से 11 जून से 9 जुलाई तक हर गुरुवार, बलसाड़ से 12 जून से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत मेरिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक का समय है। रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को संचालित होगी। ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होकर जाएगी। रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काठगोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन होकर संचालित होगी। एक सेकेंड फर्स्ट एसी, थर्ड एसी, 7 स्लीपर, 4 जनरल कोच इस ट्रेन में लगे हुए हैं। एक बार फिर बता दें, एक सेकेंड

इंड एसी, 4 थर्ड एसी, 7 स्लीपर और 4 जनरल कोच इस ट्रेन में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। ई केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जनसेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। आगरा रेल मंडल डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रैल व मई माह में यूपीआई एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से टिकट खरीदने वाले यात्रियों की संख्या तथा राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन दो माह में आगरा रेल मंडल में 10.13 लाख लोगों ने डिजिटल माध्यम से टिकट प्राप्त कर भुगतान किया। बीते वर्ष की अपेक्षा ये 38.33% अधिक है। ताज नेचर वॉक में विशेष योग सत्र आयोजित किया गया। इसमें कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। विभिन्न योगासन और प्राणायाम कराए गए। कार्यक्रम से पहले पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुए सत्र में वन कर्मियों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवाओं ने भाग लिया। योग गुरु सत्येंद्र शर्मा ने अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ध्यान की विधियां सिखाई। प्रतिभागियों ने वृक्षासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, सिंहासन और उष्ट्रासन सहित कई योगासन किए। यूथ हॉस्टल में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आगरा के 15 विकास खंडों से आए युवाओं और विभिन्न युवा मंडलों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। सीबीएसई ने 12वीं के परिणाम के बाद छात्रों की तरफ दाखिल पुनर्मूल्यांकन व अंक सत्यापन के आवेदनों का निपटारा कर नतीजे जारी करने शुरू कर दिए हैं। कुल 1.6 लाख आवेदन आए थे। बोर्ड ने कहा कि करीब 87% आवेदनों का निस्तारण कर परिणाम जारी कर दिया गया है। शेष आवेदनों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली में मूल्यांकन और अंक दर्ज करने से जुड़ी विसंगतियों की शिकायतें सामने आने के बाद इस वर्ष बहुत बड़ी संख्या में सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के आवेदन आए थे। जिन छात्रों के अंकों में पुनर्मूल्यांकन या अंक सत्यापन के दौरान बदलाव पाया गया है, उन्हें संशोधित अंक तालिका डिजी लॉकर पर उपलब्ध कराई जा रही है। छात्र अपने आवेदन की स्थिति सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं। पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द की गई नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा रविवार को उत्तर प्रदेश में कड़ी सुरक्षा और बहुस्तरीय निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। राज्य में बनाए गए 760 परीक्षा केंद्रों पर 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की ओर से आयोजित यह पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हुई। इस बार अभ्यर्थियों को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक ही अभ्यर्थियों का प्रवेश अनुमन्य था। पुनर्परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने व्यापक सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की थी। गोपनीय परीक्षा सामग्री को जीपीएस युक्त वाहनों से केंद्रों तक पहुंचाया गया, जबकि सभी परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया। अभ्यर्थियों को प्रवेश से पहले कई स्तर की जांच से गुजरना पड़ा। इसमें प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर का सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तथा अलग अलग स्तर पर तलाशी शामिल रही। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस बल तैनात किया गया। ड्यूटी में 192 राजपत्रित अधिकारी, 512 निरीक्षक, 1747 उप निरीक्षक, 2152 मुख्य

आरक्षी, 5,882 आरक्षी और 207 होमगार्ड स्वयं सेवकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा जिलों में पीएसी की 3 कंपनियां और जीआरपी क्षेत्र में 1 प्लाटून पीएसी भी तैनात की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हवाई अड्डों और हेलीपैड के जरिए राज्य में पहुंची गोपनीय परीक्षा सामग्री को डाक विभाग के समन्वय से सुरक्षित एस्कार्ट के साथ संबंधित बैंकों और सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया।

कार्यक्रम में चलते चलते सुनिए रोजगार सूचना। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC लखनऊ ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कुल 238 पद भरे जाएंगे। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 थी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुल पद 238, योग्यता इस प्रकार है: स्नातक की डिग्री होना आवश्यक है या इसके समकक्ष योग्यता हो, पीईटी 25 का वैध स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। वेतनमान है 9,300 से 34,800 रुपए। न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम इसकी आयु सीमा रखी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु में यूपी के आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी। चयन प्रक्रिया इस प्रकार है: शॉर्ट लिस्टिंग, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये देय होगा। भुगतान ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट है upssc.gov.in। इसके साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 8 बजने को है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की, सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि आईएनएस विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौ सैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो

0: के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनैनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ MIFF 2026 का समापन हुआ। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी

0: मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज स्ट्रांग मैरिटाइम केपेबिलिटी इज डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एंड इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इट। President Draupadi Murmu visits Kuno National Park in Madhya Pradesh, reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. US Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that a strong maritime capability is the deciding factor for a country's economic and strategic influence, and India is preparing for it. He said a country with maritime capabilities is strong and has more economic and strategic influence.
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड दीज रिमार्क्स आफ्टर कमिशनिंग थ्री इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन नेवी प्लेटफॉर्म्स, INS Dhunagiri, INS Sanshodhak एंड INS Agra एट द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन कोलकाता yesterday. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare.
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: Prime Minister Modi has expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. The Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. President Draupadi Murmu visited Madhya Pradesh's Kuno National Park yesterday and reviewed the progress of Project Cheetah, India's flagship initiative to reintroduce the species in the wild after its extinction in the country. During the visit, the president toured the park's cheetah management area and was briefed by officials on the status of the project. Kuno, the country's first cheetah reintroduction site, has been developed under Project Cheetah because of its suitable habitat, adequate prey base and relatively low human disturbance. More from our correspondent.
3: President Draupadi Murmu went on a safari at Kuno National Park this morning. The president will also interact with the members of the Saharia tribe working as cheetah mitras, cheetah trackers, local forest personals and tourist guides to learn about their experiences and role in the project. Earlier on Sunday, President Murmu visited the Cheetah Command and Control Center at Kuno. The president viewed an exhibition related to the

0: reviews progress of Project Cheetah. India to host two-day meeting of BRICS National Security Advisors in New Delhi today. National Testing Agency to commence UGC NET June 2026 examination from today. U.S. Vice President J.D. Vance says Iran talks making progress as delegations meet in Switzerland. And in men's hockey, India beat Netherlands 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मुअस्सर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के यूजीसी नेट इम्तिहानात का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जे डी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है और मर्दों के हॉकी में एफआईएच प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
2: भारत आज अपने पूरे नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने ये राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस चिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अल-अक़वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत

0: तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहां इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों, चीता ट्रैकर्स, मकामी जंगलाती अमले और सयाहों के गाइड्स के तौर पर काम कर रहे हैं। इससे पहले इतवार को सदर जमहूरिया ने कूनो में चीता कमान व कंट्रोल मरकज का दौरा किया था और चीता प्रोजेक्ट से मुतालिक एक नुमाइश देखी थी। अफसरों ने उन्हें बताया कि भारत में फिलहाल 52 चीते हैं, जिनमें से 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में हैं। तीनों चीतों को गांधी सागर जंगलाती तहफुज गांव में मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जमहूरिया को मवेशियों पर नजर रखने और उनकी ट्रैकिंग के निजाम के बारे में जानकारी दी गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीतों की बाजाबाद कारी का प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने अपने यौम पैदाइश पर कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को लाकर बसाया था। इसके बाद जुनूबी अफ्रीका और बोत्सवाना से मजीद चीते लाए गए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारत आज नई दिल्ली में शुरू होने वाली ब्रिक्स कौमी सलामती के मुशीरों की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस की मेजबानी के फराइज अंजाम देगा। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे, जिसमें इस ब्लॉक के 11 रुकन मुल्कों के सलामती से मुतालिक सरबराहान शिरकत करेंगे। इनमें भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, एथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: कॉन्फ्रेंस में सभी अरकान आज दुनिया को दरपेश सलामती के गैर रिवायती चैलेंजेस के मौजू पर तबादला ख्याल करेंगे। साथ ही वो कौमी सलामती को दरपेश खतरात की नौइयत पर बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत किशोर कुमार की आवाज में अनुरोध फिल्म से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का गीत। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना आमने सामने फिल्म का युगल गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। फिल्म है मेरे हमदम मेरे दोस्त, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय 9:15 होने को है। हम अपने लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर विवेक कुमार पांडे का।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कुशीनगर जिले के तमकुही राज में आयोजित एक कार्यक्रम में तमकुही राज व फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों की 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यहां जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 25 साल पहले यहां जंगल पार्टी का आतंक था, इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, मुसहर समुदाय में भूखमरी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना

0: अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
1: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
0: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे एवं राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री युवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पा रहे, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते हैं।
0: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को भावभीनी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह, सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
3: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
4: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25,625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को शत प्रतिशत सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आमजन पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने

0: बताया कि यह पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में सहजन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के BLJ ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा MP बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत AK शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
2: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर की समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार ट्रिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल।

0: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मंजूषा। इसमें आइए सुनते हैं सहरा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी की शब्द रचना को संगीत दिया है रामलाल ने।

अभी आपने सुना आदमी फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, नौशाद के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम का अगला गीत लिया है आग फिल्म से। इसे गाया है शमशाद बेगम ने, धुन बनाई है राम लक्ष्मण ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं आंखें फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में। साहिर लुधियानवी के गीत को संगीत दिया है रवि ने।

आखिर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं मनीषा देवी।

इस समय आप सुन रहे हैं मनीषा देवी के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। कलाकार है एक बार फिर मनीषा देवी।

कार्यक्रम लोक संगीत में आज कलाकार थे मनीषा देवी, आपके साथ संगत कलाकार थे ढोलक पर परमानंद शर्मा, हारमोनियम पर दीनदयाल शर्मा और साइड रिदम दी थी राजकुमार पांडे ने। इसके साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, सुबह के 10 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर सरिता।

का ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो

में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

अभी आपने सुना शागिर्द फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।

0: जी विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं शान फिल्म का गीत आशा भोसले के स्वर में. गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं RD बर्मन.

अभी आप सुन रहे थे शिकार फिल्म का गीत आशा भोसले और साथियों के स्वर में। गीत के बोल लिखे थे हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, आनंद बख्शी का लिखा हुआ लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिया है फिल्म शारदा से, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

अभी आप सुन रहे थे शारदा फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं शर्मीली फिल्म का युगल गीत। नीरज का लिखा गीत किशोर कुमार की आवाज में शर्मीली फिल्म से। संगीतकार हैं SD बर्मन। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार के स्वर में शर्मीली फिल्म का ये गीत।

शर्मिली फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुर सरिता यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित मणि प्रसाद का राग शुद्ध भैरव में ख्याल गायन।

Gabba,

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित मणि प्रसाद का राग शुद्ध भैरव में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे महान कलाकार की, जिनकी आवाज, व्यक्तित्व और अभिनय ने दर्शकों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की, जिन्हें हिंदी फिल्मों के सबसे प्रभावशाली अभिनेताओं में गिना जाता है। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवाशहर में हुआ था। उनका पूरा नाम अमरीश लाल पुरी था। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से भारतीय सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने रंगमंच यानी थिएटर में लंबे समय तक काम किया। थिएटर ने उनके अभिनय को गहराई दी, उनकी आवाज को मजबूती दी और संवाद बोलने की कला को निखारा। शुरुआत में उन्हें फिल्मों में तुरंत सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उनकी गहरी आवाज, तेज नजरें और दमदार संवाद अदायगी ने उन्हें दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।

अमरीश पुरी का फिल्मी सफर बहुत लंबा और शानदार रहा। उन्होंने हिंदी सिनेमा में खलनायक की भूमिका को एक अलग ऊंचाई दी। जब वे पर्दे पर आते थे तो पूरा दृश्य अपने आप प्रभावशाली हो जाता था। उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे केवल चेहरे से नहीं बल्कि अपनी आवाज और आंखों से भी अभिनय करते थे। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज इतना प्रभावशाली था कि साधारण संवाद भी यादगार बन जाता था। फिल्म मिस्टर इंडिया में उनका किरदार मोगैम्बो आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय किरदारों में गिना जाता है। मोगैम्बो खुश हुआ जैसे संवाद आज भी लोगों के जुबान पर है। लेकिन अमरीश पुरी केवल खलनायक तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने पिता, परिवार के मुखिया, पुलिस अधिकारी, राजा, नेता और भावुक इंसान जैसे कई अलग अलग किरदार निभाए। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में उनका कठोर लेकिन अंदर से भावुक पिता का किरदार आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है।

दोस्तों, अमरीश पुरी ने अपने करियर में मुख्य धारा की फिल्मों के साथ साथ समानांतर सिनेमा और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी जैसे गंभीर फिल्मकारों के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनकी अभिनय क्षमता इतनी मजबूत थी कि वे हर तरह के सिनेमा में खुद को साबित कर सके। उन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश, अर्धसत्य, मेरी जंग, नगीना, त्रिदेव, घायल, करण अर्जुन, विरासत, घातक, कदर और

कई अन्य फिल्मों में यादगार अभिनय किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वे रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी और हॉलीवुड फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेंपल ऑफ डूम में भी दिखाई दिए। ये उनकी प्रतिभा का प्रमाण था कि भारतीय सिनेमा के साथ साथ विदेशी सिनेमा में भी उनका प्रभाव महसूस किया गया। वे उन कलाकारों में थे जिनकी मौजूदगी से कहानी में वजन आ जाता था। उनका अभिनय केवल मनोरंजन नहीं करता था बल्कि किरदार को जीवन दे देता था।

दोस्तों अमरीश पुरी को उनके शानदार अभिनय के लिए कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें थिएटर में योगदान के लिए वर्ष 1979 में

संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो रंगमंच की दुनिया का बहुत सम्मानित पुरस्कार माना जाता है। फिल्मों में भी उन्हें बहुत सराहना मिली। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला। मेरी जंग, घातक और विरासत जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को बहुत ही सराहा गया। खास बात यह है कि उन्हें लोग अक्सर खलनायक के रूप में याद करते हैं, लेकिन उनके पुरस्कार ये बताते हैं कि वे एक संपूर्ण अभिनेता थे। वे केवल डराने वाले विलन नहीं थे, बल्कि हर किरदार में भावनाओं की गहराई ला सकते थे। कभी वे कठोर पिता बने, कभी समाज से लड़ता हुआ शक्तिशाली व्यक्ति, कभी सत्ता का घमंड दिखाने वाला खलनायक, और कभी अपनी बेटी के लिए चिंतित पिता। यह विविधता उन्हें महान बनाती है। अमरीश पुरी ने यह साबित किया कि बड़ा कलाकार वही है जो हर भूमिका को पूरी ईमानदारी और गहराई से निभाए।

दोस्तों, अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को हुआ, लेकिन उनका अभिनय आज भी जीवित है। उनके संवाद, उनकी आवाज और उनके किरदार आज भी दर्शकों को याद है। हिंदी सिनेमा में बहुत से कलाकार आए और गए, लेकिन अमरीश पुरी जैसा व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिला। उन्होंने खलनायक की भूमिका को भी ऐसी गरिमा दी कि दर्शक उनसे डरते भी थे और उन्हें पसंद भी करते थे। मोगैम्बो खुश हुआ से लेकर जा सिमरन चीले अपनी जिंदगी तक, उनके संवाद हर पीढ़ी के दर्शकों को याद है। उनकी कला, उनका अनुशासन और उनका संघर्ष हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में हम अमरीश पुरी को श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा, उनका व्यक्तित्व और उनकी गूंजती हुई आवाज हमेशा अमर रहेगी। और इसी के साथ मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त करिमा शाक्य, लेती है आपसे विदा और कार्यक्रम आज के कलाकार को अब यहीं संपन्न करते हैं।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट के बारे में और अवसर है विश्व वर्षावन दिवस, यानी कि आज 22 जून को हर साल हम मनाते हैं विश्व वर्षावन दिवस या कहें वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। वर्षावन सुनते ही हमारे मन में घने घने पेड़, चारों तरफ हरियाली, लगातार बरसती बारिश, पक्षियों की आवाज और मिट्टी की खुशबू जैसी तस्वीर बनती है। लेकिन ये जंगल सिर्फ सुंदरता के लिए ही नहीं होते, ये हमारी धरती की सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। वर्षावन ऐसे जंगल हैं जहां साल भर बहुत बारिश होती है और पेड़ पौधे बहुत घने होते हैं। इन्हीं जंगलों में हजारों तरह के जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, फूल, फल और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। इन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है क्योंकि ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। आज हम सब महसूस कर रहे हैं कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। कभी बहुत गर्मी पड़ती है, कभी अचानक बारिश हो जाती है, कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। ऐसे में वर्षा वनों को बचाना सिर्फ जंगल बचाना नहीं बल्कि अपनी हवा, पानी, मौसम और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाना है। तो आइए सावन, हवा और प्रकृति की इसी प्यारी भावना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुंदर से गीत के साथ।

दोस्तों, प्रकृति सच में बहुत बड़ी चित्रकार है। उसने पहाड़ों को आकार दिया, नदियों को रास्ता दिया, फूलों को रंग दिए और वर्षावनों को धरती की सबसे सुंदर पेंटिंग बना दिया। अगर हम किसी वर्षावन को ध्यान से देखें तो वहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती है। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छूते हैं, बेले पेड़ों से लिपटी रहती हैं, पत्तों पर बारिश की बूंदें चमकती हैं, पक्षी डालियों पर चहकते हैं और जमीन पर छोटे छोटे जीव अपना अपना काम करते रहते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। वर्षावन हमें बताते हैं कि धरती पर जीवन अकेले नहीं चलता, सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। पेड़ हवा को साफ करते हैं, मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, बारिश को संतुलित करते हैं और जानवरों को घर देते हैं। अगर इस खूबसूरत चित्र से पेड़ हट जाए तो पूरी तस्वीर अधूरी हो जाती है। आज इंसान विकास के नाम पर जंगलों को काट रहा है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि जंगलों के बिना जीवन की तस्वीर सुंदर नहीं रह सकती। प्रकृति ने जो रंग हमें दिए हैं, उन्हें बचाना हमारी ही जिम्मेदारी है। वर्षावन केवल हरे रंग की छटा नहीं, बल्कि जीवन, मौसम और जलवायु की सुरक्षा का आधार है। इसी भाव के साथ आप सुनते हैं प्रकृति की सुंदरता को महसूस कराता हुआ ये गीत।

श्रोताओ, वर्षावन और बारिश का रिश्ता बहुत गहरा है। हम अक्सर सोचते हैं कि बादल आते हैं तो बारिश होती है, लेकिन बादल बनने में जंगलों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पेड़ अपनी जड़ों से पानी लेते हैं और पत्तों के माध्यम से हवा में नमी छोड़ते हैं। ये नमी बादलों के बनने में मदद करती है और फिर बारिश के रूप में धरती पर वापस आती है। यानी वर्षावन अपने आसपास के मौसम को नम, ठंडा और संतुलित रखने में मदद करते हैं। अगर ये जंगल कम हो जाए तो बारिश का चक्र भी बिगड़ सकता है। कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं बिल्कुल नहीं होती और कहीं मौसम इतना बदल जाता है कि किसानों के लिए खेती करना मुश्किल हो जाता है। पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। हमारी नदियां, तालाब, कुएं, खेत और पीने का पानी सब कहीं ना कहीं इस प्राकृतिक जल चक्र से जुड़े हैं। वर्षावन मिट्टी को भी बहने से बचाते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती हैं, इसलिए तेज बारिश में भी मिट्टी पूरी तरह बहती नहीं है। लेकिन जब जंगल कट जाते हैं तो बारिश का पानी मिट्टी को बहा कर ले जाता है और जमीन धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। इसलिए वर्षावन बारिश, पानी और मिट्टी तीनों के रक्षक हैं।

दोस्तों, जब धरती हरी होती है तो सच में लगता है जैसे जमीन गा रही हो। वर्षा वन धरती की उसी खुशी की आवाज है। ये जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते, बल्कि लाखों जीवों का घर होते हैं। एक पेड़ पर पक्षी रहते हैं, कीड़े रहते हैं, बंदर झूलते हैं, बेलें चढ़ती हैं, फल लगते हैं, उसी पेड़ के नीचे बीज गिरते हैं और फिर उन्हीं बीजों से नए पौधे उगते हैं। यानी एक जंगल अपने आप में एक पूरी दुनिया है। वर्षा वनों में ऐसी कई वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं जिनके बारे में विज्ञान आज भी पूरी तरह नहीं जानता। कई औषधीय पौधे भी इन्हीं जंगलों से मिलते हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अगर जंगल कटते हैं तो केवल पेड़ नहीं जाते, बल्कि हजारों जीवों का घर उजड़ जाता है। कई पक्षी, जानवर और पौधे हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। और जब प्रकृति की एक एक कड़ी टूटती है तो उसका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। जैसे परिवार में हर सदस्य की अपनी जगह होती है, वैसे ही प्रकृति में हर जीव की अपनी भूमिका होती है। कोई परागण करता है, कोई बीज फैलाता है, तो कोई मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसलिए वर्षा वनों को बचाना मतलब जीवन की पूरी श्रृंखला को बचाना।

दोस्तों, आज विश्व वर्षा वन दिवस पर हमने जाना कि वर्षा वन हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। ये केवल घने जंगल नहीं बल्कि हमारी हवा, पानी, मिट्टी, बारिश, मौसम और आने वाली पीढ़ियों के रक्षक हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर धरती की गर्मी कम करने में मदद करते हैं। वर्षा वन बारिश के चक्र को संतुलित रखते हैं, नदियों और तालाबों को जीवन देते हैं और मिट्टी को बहने से बचाते हैं। इनके अंदर लाखों जीव जंतु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और औषधीय पौधे रहते हैं। अगर जंगल सुरक्षित रहेंगे तो धरती भी सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर हम जंगल काटते रहे तो मौसम और बिगड़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, पानी की कमी होगी और जीवन मुश्किल होता जाएगा। इसलिए वर्षा वन बचाना केवल सरकार या पर्यावरण संस्थाओं का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।

हम कागज़ का कम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ और अधिक लगा सकते हैं, पुराने पेड़ों को बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और बच्चों को प्रकृति से प्यार करना सिखा सकते हैं। हमारा देश अपनी धरती, खेतों, नदियों, पहाड़ों और जंगलों से ही सुंदर है। अगर हम इस सुंदरता को बचाएंगे तभी सच में कह पाएंगे कि ऐसा देश है मेरा। इसी उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ मैं यानी आपकी रेडियो दोस्त करिमा शाक लेती है आपसे विदा और आपको छोड़े जाती है इस प्यारे से गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने को है, समय है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का।

0: नंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न

बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी ठाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल

0: विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
1: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
0: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
1: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
0: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद

0: आता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा। आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: कार्यक्रम का पहला गीत था सोनू निगम और संजीवनी की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे संदेश शांडिल्य के धुन। अगला गीत है शान की आवाज में फिल्म राजू चाचा से। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से सवारा है जतन ललित ने।
1: संजना, संजना,
2: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
3: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: कार्यक्रम नए तराने को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं शफकत अमानत अली को फिल्म रावण में। विशाल शेखर की धुन पर बोल है कुमार के।

डोमिनिक सेरेजा की आवाज़ में ये गीत था फिल्म रॉक ऑन से। जावेद अख्तर की शब्द रचना थी, शंकर एहसान लॉय की संगीत रचना।

अंकित तिवारी की आवाज में ये गीत था फिल्म रॉय से। अमाल मलिक की धुन पर बोल थे अभिन्द्र कुमार उपाध्याय के। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है फिल्म स्पेशल 26 से। कीर्ति संगाथिया की आवाज है, इरशाद कामिल के बोल है, एम एम करीम की धुन।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के एक बजने को है, अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे।

0: होनी चाहिए। कैच द रेन मुहिम को ज्यादा मौसर तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बारिश के पानी को जखीरा करने को वसी पैमाने पर अवामी शिरकत से मुंसलिक किया जाना चाहिए। रियासती हुकूमत ने कबायली अक्सरियती जिले सोनभद्र में 257 करोड़ रुपए की लागत से 86 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने बताया कि सड़क की तामीर के लिए सर्वे और टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन सड़कों की तामीर से 4 सरहदी रियासतों के साथ राबते में बेहतरी आएगी। ये राबता सनअतों के लिए खाम माल और तैयार मसनूआत की नकलो हमल में सहूलत फराहम करेगा। रियासत के बेशतर अजला में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। कई अजला में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह लहर आइंदा 3 से 4 रोज तक जारी रहेगी। मानसून के मशरकी उत्तर प्रदेश में महीने के आखिर तक पहुंचने की आमद है। दूसरी तरफ रियासत में बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्मी की लहर की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीमी काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीमशुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, कार्यक्रम घर संसार लेकर आपसे मुलाकात करने और ढेर सारी बातें करने, साथ ही गीत संगीत की दुनिया में आपको ले जाने आ पहुंची हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो मित्र मंगला शर्मा पाराशर। तो बहनों, कैसी हैं आप? हमें पूरी आशा है कि आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। बहनों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुनिया भर में लोगों ने न केवल योग का अभ्यास किया था, बल्कि योग का निरंतर अभ्यास करने का संकल्प भी लिया। बहनों, ये सच है कि योग हमें प्रकृति से जोड़ता है। वैसे प्रकृति ने जो अनमोल उपहार हमें दिए हैं, उनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। प्रकृति ने अपने विभिन्न प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे वनस्पतियों से पृथ्वी का श्रृंगार किया है। ये पेड़ पौधे और वन वैज्ञानिक रूप में पृथ्वी के लिए फेफड़ों का कार्य भी करते हैं। पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करके ये वन बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वर्षा के निर्माण में सहायता करते हुए जल चक्र को नियमित करते हैं, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण भी करते हैं। बहनों, पृथ्वी पर भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के वन मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन अमेजन की, जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना समेत दक्षिण अमेरिका के विशाल क्षेत्रों को कवर करता है। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों की एक बड़ी मात्रा यहाँ पाई जाती है। बहनों, इसके बाद कांगो वर्षा वन को बड़ा वर्षा वन कहा जाता है। ये मध्य अफ्रीका में स्थित है, जिसमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन और अंगोला और दक्षिण सूडान के कुछ हिस्से शामिल हैं। कांगो वर्षावन लगभग 1.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर के अनुमानित आकार में फैला है। दुनिया भर में मौजूद वर्षावन के कारण ही आज इंसानों और जीवों तक ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है। इसमें आने वाली लगातार कमी के कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। वर्षावनों के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु सन 2017 में 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया गया था, जो कि अब हर साल आज यानी कि 22 जून के दिन मनाया जाता है।

0: बहनों अपने मन के विचारों, भावनाओं, दृष्टिकोण और अनुभवों को दूसरों के सामने कहना या स्पष्ट करना ही अभिव्यक्ति है। और फिर बहनों, भारतीय संविधान में तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक मानवीय और नागरिक अधिकार है, जो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी डर के अपनी राय रखने की अनुमति देता है। आज सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। आइए इस बारे में और जानते हैं, सुनते हैं शिवानी चौहान की वार्ता सोशल मीडिया दोधारी तलवार।
1: आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आम जिंदगी का एक खास हिस्सा है, सोशल मीडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, प्राचीन काल से ही उसने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न माध्यमों से की है। कबूतर के द्वारा पत्र भेजने से प्रारंभ हुई यह अभिव्यक्ति आज डाक से पेजर, पेजर से टेलीफोन, टेलीफोन से इंटरनेट और सोशल मीडिया तक जा पहुंची है। सोशल मीडिया क्या है? यह उन वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को संदर्भित करता है जो उपयोगकर्ताओं को परस्पर वार्ता करने, अपने विचारों की अभिव्यक्ति

निर्बाध रूप से करने में सक्षम बनाता है। यह एक अंतः क्रिया है जो व्यक्ति को समाज, समाज को राष्ट्र तथा राष्ट्र को विश्व से जोड़ विश्वग्राम की संकल्पना का निर्माण करती है। यह सूचना एवं संचार माध्यमों का निर्बाध एवं विकेंद्रीकृत रूप है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के मूल अधिकारों का आर्टिकल 19 भी इसी की पुष्टि करता है। सोशल मीडिया पिछले कुछ समय में क्रांतिकारी रूप में विस्फोटित हुआ है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 3 बिलियन से भी अधिक दर्ज की गई। अकेले भारत में ही इसके लगभग 500 मिलियन से भी अधिक उपयोगकर्ता हैं। प्रश्न यह उठता है कि आज सोशल मीडिया प्रत्येक व्यक्ति की पहली पसंद क्यों बनता जा रहा है? दरअसल सोशल मीडिया प्रयोग की दृष्टि से सरल तथा अपेक्षाकृत सस्ता माध्यम है, जिसकी पहुंच लगभग विश्व के कोने-कोने तक है। आज व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति 7 समुद्र पार बैठे लोगों के समक्ष भी सोशल मीडिया के माध्यम से करने को सक्षम है। सोशल मीडिया ने एक आम व्यक्ति को न केवल विचारों, कला तथा योग्यता आदि को अभिव्यक्त करने का माध्यम प्रदान किया है, बल्कि उसे उसकी सराहना भी प्रदान की है। लोगों द्वारा स्वयं की फोटो, वीडियो, लेख आदि पर किए गए कमेंट्स, लाइक्स, उनके व्यूज बढ़ना, उसका वायरल होना, व्यक्ति के फॉलोअर्स बढ़ना, उसे सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा प्रदान कर रहा है। आज व्यक्ति को गाना गाने, नृत्य करने, फिल्म बनाने, चित्रकारी करने, शिक्षा प्रदान करने आदि किसी भी कार्य के लिए किसी भी तरह की मध्यस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है। वह बहुत ही आसानी से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सोशल मीडिया द्वारा कर सकता है। यही नहीं, इसके लिए कई वेबसाइट्स के द्वारा उसे मेहनताना भी प्रदान किया जाता है। आज व्यक्ति केवल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या टीचर ही नहीं, ब्लॉगर, यूट्यूबर, स्टैंड अप कॉमेडियन, डिजिटल मार्केटर भी बनना चाहता है। रोजगार के स्रोत के रूप में प्रत्येक संगठन आज अपना प्रचार सोशल मीडिया के द्वारा कर रहा है। इसी के द्वारा ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग आदि ने दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित उत्पादों के विपणन को भी सक्षम बनाया है। गत 2 वर्षों में इस दुनिया ने महामारी का जो मंजर देखा, उसमें सोशल मीडिया एक उपहार की तरह साबित हुआ है। जहां व्यक्ति को समाज से, परिवार से एकदम अलग थलग होना पड़ा, ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया ने ही लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से बचाया। यही नहीं, दूर दराज में फंसे लोगों को घर पहुंचाने, जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने और मरीजों को दवाइयां तथा ऑक्सीजन पहुंचाने जैसी अन्यतम जानकारियां इस कोरोना काल में सोशल मीडिया ने ही प्रसारित की हैं। यह कहना गलत ना होगा कि सोशल मीडिया आज लोगों के घर का, समाज का और जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जैसा कि कहा जाता है, प्रत्येक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक हमें उत्कर्ष दिखलाता है और दूसरा अपकर्ष। इसी प्रकार सोशल मीडिया का भी एक दूसरा पहलू है। आज भी इसके सामने अनेक चुनौतियां हैं, जैसे यह व्यक्ति की निजता का हनन करता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति की निजी जिंदगी को भी सोशल मीडिया सार्वजनिक कर देता है, जिसके फलस्वरूप ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सोशल मीडिया व्यक्ति को एंटी सोशल बनाता है। एक व्यक्ति अपने परिवार व दोस्तों के साथ ना रहकर घंटों अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पर रहना चाहता है। वह एक तरह से समाज से कटने की प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति अनचाही मानसिक बीमारियों जैसे कि डिप्रेशन, आलसीपन, हिंसक प्रवृत्ति, अलगाववाद आदि से जूझता है। साथ ही थकान, कॉर्पल टनल सिंड्रोम जैसी शारीरिक बीमारियों से भी ग्रसित होता जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया द्वारा अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। स्टॉकिंग, वायरल मैसेजेस इसी तरह के साइबर अपराधों के परिणाम हैं। इसी प्रकार कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी जानकारियां भी प्रसारित हो जाती हैं जो भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती हैं। ऐसी स्थिति में सामुदायिक व वर्गीय हिंसा भड़कना, राष्ट्रीय अस्मिता को चुनौती, मानहानि की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पिछले दिनों कोरोना काल में भी सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के कारण लोगों को ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
लोगों के बीच

0: डर की, भय की स्थितियां उत्पन्न हो गई कि कहीं वे भी उस कोरोना से ग्रसित ना हो जाएं जैसे कि उनका पड़ोसी हुआ, या वह भी इस तरह से ना मर जाएं जिस तरह से उनका पड़ोसी इस दुनिया से चला गया। दरअसल सोशल मीडिया आज एक दोधारी तलवार के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। यह एक तरफ संपूर्ण समाज के लिए 21वीं सदी का तकनीकी वरदान है, वहीं दूसरी तरफ मानव एवं समाज के लिए चुनौतीपूर्ण भी है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक नियम अधिनियम तथा नियामक संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है, जो लोगों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाए बगैर सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से संवेदनशील जानकारियों को नियमित कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया तकनीक का एक उभरता हुआ घटनाक्रम है, और हमें किसी भी जल्दबाजी में आकर इसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करते हुए भविष्योन्मुख उत्कर्ष की ओर बढ़ना चाहिए।
1: पैनो, अभी आपने सुनी वार्ता सोशल मीडिया दोधारी तलवार। वार्ताकार थी शिवानी चौहान। और आइए बहनों, मनोरंजन की इस कड़ी में अब एंजॉय करते हैं ये गीत, और उसके बाद मिलेंगे आपसे कार्यक्रम के अगले सेगमेंट मेरी माटी मेरा देश में।

0: बहनों, हमारे देश के मानचित्र में राजस्थान अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, लोकगीत, संगीत, नृत्य, विशेष व्यंजनों के कारण एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्थान के रेगिस्तान का मुख्य आकर्षण केंद्र रहा है ऊंट। जी हाँ बहनों, रेगिस्तान का जहाज कहलाने का श्रेय रखने वाला ऊंट धरती पर भी यात्रा करने का साधन रहा है। वैसे बहनों, ऊंट के बारे में तो काफ़ी बातें आप जानती ही होंगी। तपते हुए रेगिस्तान में लगभग 21 दिनों तक बिना पानी पिए ये रह सकता है। चमड़ी मोटी होने के कारण से इन्हें पसीना नहीं आता। इनके जबड़े मोटे होते हैं, जिस वजह से ये रेगिस्तानी कांटेदार पौधों को भी आसानी से खा लेते हैं। ऐसी ही अनोखी विशेषताओं के बल पर ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। बहनों, भारत को त्योहारों और मेलों का देश कहा जाता है। आज हम बताते हैं आपको पुष्कर ऊंट मेले के बारे में। राजस्थान के अजमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दौरान एक विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक पशु उत्सव का आयोजन किया जाता है। यह मेला दुनिया के सबसे बड़े ऊंट व्यापार मेलों में से एक है। पशु व्यापार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रद्धालुओं द्वारा पुष्कर झील के पवित्र घाटों पर स्नान, हस्तशिल्प की दुकानें इस पुष्कर मेले की रौनक हैं। बहनों, पुष्कर तीर्थ और पुष्कर मेले से जुड़ी कुछ बातें हम आपको अभी सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम के माध्यम से, जिसमें हमने की बातचीत आगरा घूमने आए हुए हमारे एक परिचित अजमेर के स्थानीय निवासी विनय शर्मा से। विनय जी, आपका आज हमारे कार्यक्रम घर संसार में स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
0: जैसा कि आप अजमेर के स्थानीय निवासी हैं, तो हम आपसे अजमेर के निकटवर्ती पुष्कर मेले आयोजन को संक्षेप में जानना चाहते हैं।
1: पुष्कर मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला होने के साथ साथ एक सांस्कृतिक पर्व व उत्सव भी है, साथ ही यह एक विश्वविख्यात पशु मेला भी है। कार्तिक माह की प्रथमा से कार्तिक पूर्णिमा तक पूर्णिमा स्नान के साथ संपन्न होता है। विशेष रूप से अंतिम 5 दिनों में अधिक पर्यटक और धर्मावलंबी यहाँ पहुँचते हैं और पुण्य कमाते हैं तथा मेले का आनंद लेते हैं। मेले में पशु करतब, ऊंट, घोड़ा, विभिन्न मवेशी, विभिन्न प्रकार के नृत्य, करतब और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है, जिसमें एक अनूठा सम्मिश्रण भारतीय संस्कृति के साथ विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं और प्रतियोगिताओं के उपरांत सभी प्रतिभागियों को, विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाता है। साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार के पशु वंश यहाँ पहुँचते हैं, उनकी भी श्रेष्ठ जो उपलब्धियाँ होती हैं, उनके जो श्रेष्ठ पशु निकल करके आते हैं, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है।
0: पुष्कर को भारत का एक प्राचीन और पवित्र शहर कहा जाता है, तो विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेले के अलावा पुष्कर की अन्य विशेषताएं क्या हैं?
1: पुष्कर पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुष्कर को तीर्थराज होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि ऐसा माना गया है, ऐसा कहा गया है कि पुष्कर की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कर कमलों से की है। इस और इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी माना गया। पंचतीर्थ स्थान या स्नान जो है वो यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध स्नान है। कार्तिक के आखिरी के 5 दिन, पूर्णिमा से 5 दिवस पूर्व यहाँ पंचतीर्थ स्थान होता है, जिसे मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया है। इसके साथ साथ पुष्कर विभिन्न ऋषियों की, बड़े ऋषियों की तपोभूमि रहा है। पुष्कर धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव बन गया है, जहाँ न केवल स्थानीय पर्यटक और धर्मावलंबी बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में इस मेले में पहुंचते हैं और उतनी ही सक्रियता से भाग लेते हैं, जो कि देखते ही बनता है। अतः इस मेले का जो विश्वव्यापी महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि यह अपनी विशिष्ट स्थलाकृति के कारण भी आकर्षण का केंद्र है, जहां पर एक तरफ तो झील है और दूसरी तरफ मरुभूमि का विस्तार दिखाई देता है। आशा है ये अभी और

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: ऊंचाई पर जाएगा और तरक्की करेगा। यहाँ के जो धर्मावलंबी हैं वह भी इसका लाभ लेंगे और सांस्कृतिक छटा इसकी निखरेगी।
1: विनय जी, पुष्कर मेले की तरह राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध पारंपरिक मेले या उत्सव कौन-कौन से हैं?
0: जी, पुष्कर मेले के समान ही, क्योंकि राजस्थान वीरों की धरती है तो आयोजन तो यहाँ कम नहीं है, लेकिन मरुभूमि की अधिकता है। तदुपरांत भी यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के आयोजनों का भरपूर आनंद मिलता है, जो कि वर्ष पर्यंत कहीं ना कहीं आयोजित होता रहता है। उनमें से कुछ प्रमुख हैं: बीकानेर का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जैसलमेर का मरु महोत्सव, नागौर का पशु मेला, वेणेश्वर धाम मेला जिसे आदिवासी कुंभ से भी संबोधित

0: धाम मेला, जिसे आदिवासी कुंभ से भी संबोधित किया जाता है। मारवाड़ महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, तीज, गणगौर आदि विभिन्न प्रकार के आयोजन राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति और धरोहर को इंगित करते रहते हैं।
1: विनय जी, आज आपने पुष्कर तीर्थ और पुष्कर मेले से संबंधित जो भी जानकारी हमसे साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
2: बहनों, अब आती है बारी फैशन ब्यूटी की। प्रकृति की गोद में बेशुमार खजाना छिपा है, बशर्ते हम ढूंढना चाहें। बहनों, अगर देखा जाए तो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, दही, बेसन, हल्दी, रसोई के मसाले, तुलसी, आसपास की कुछ वनस्पतियां, इन सभी में प्रकृति ने बेशुमार सौंदर्य निखार के गुण भर दिए हैं, मगर हम उनसे बेखबर रहे हैं और रासायनिक पदार्थों से भरपूर कॉस्मेटिक्स के पीछे भागते रहे। बहनों, हमारे ऋषि मुनि सदियों पहले अपने शरीर का कायाकल्प कर लिया करते थे ऐसी ही जड़ी बूटियों का उपयोग करके। कुदरत ने इन जड़ी बूटियों को ना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारी त्वचा की सुंदरता के लिए भी एक अनुपम उपहार के रूप में दिया है। जी हाँ, हमारा इशारा है हर्बल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की ओर। बहनों, हर्बल प्रोडक्ट्स वे उत्पाद होते हैं जो मुख्य रूप से पौधों, फूलों, पत्तियों, जड़ों, छाल या बीजों के प्राकृतिक अर्क से बनाए जाते हैं। अपनी दैनिक जीवनचर्या में हम इन हर्बल विकल्पों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे चमकदार और स्वस्थ त्वचा के लिए हल्दी और एलोवेरा युक्त क्रीम और फेस वॉश, बालों को झड़ने से रोकने और मजबूती देने में आंवला, भृंगराज, मेथी के अर्क वाले उत्पाद, नहाने के लिए नीम और तुलसी वाला सोप। तो बहनों, ये जो हर्बल कॉस्मेटिक्स होते हैं वो हानिकारक रसायनों से हमारा बचाव करते हैं और हमें प्राकृतिक रूप से पोषण प्रदान करते हैं। तो सोच समझकर अपने कॉस्मेटिक्स का चयन कीजिए और अपनी सुंदरता को निखारिए।

नमक लगभग 1.5 छोटा चम्मच, अचार को खट्टा और सुरक्षित रखने के लिए 2 बड़े चम्मच सफ़ेद सिरका। मैंने सबसे पहले प्याज को लच्छेदार काट कर रख लें और प्याज को थोड़ा मोटा ही रखें। इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालें, पीली सरसों सौंफ भी इसमें मिला दें और अब पैन में सरसों का तेल डालकर इसमें हींग, कलौजी, मेथी दाना डालें और इसमें प्याज भी डाल दें। लगभग 2 से 3 मिनट पकाकर गैस ऑफ कर दें। इसमें नमक मिलाएं और सिरका भी मिला दें। आप चाहें तो इसमें छीला हुआ अदरक और लहसुन भी मिला सकती हैं। कार्यक्रम का समापन करते हुए अब दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो सहेली मंगला शर्मा पाराशर को। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।

बहनों आइए जानते हैं रेसिपी प्याज का इंस्टेंट अचार बनाने की। जी हाँ बहनों, इसके लिए हमें चाहिए लगभग 250 ग्राम छोटे प्याज, सरसों का तेल 3 से 4 बड़े चम्मच, दरदरी पिसी हुई पीली सरसों 1 बड़ा चम्मच, दरदरी पिसी हुई सौंफ 1 बड़ा चम्मच, मेथी दाना आधा छोटा चम्मच, कलौंजी आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच हींग,

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे हमारी महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार, और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रीता गांगुली की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन ₹5,000 बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में ₹5,000 की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काश्मीर नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण

0: कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
2: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं।

0: डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौद तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी शोभा गोटू का राग मिश्र पहाड़ी में ठुमरे गायन।

अभी आप सुन रहे थे विदुषी शोभा गोटू का राग मिश्र पहाड़ी में ठुमरी गायन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म अनपढ़ में। राजा मेहंदी अली खान के बोल थे, मदन मोहन की धुन। अगला गीत है फिल्म अनाड़ी से, लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर हैं। शैलेंद्र की रचना को संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म अनुपमा से, हेमंत कुमार की तर्ज पर लफ्ज थे कैफी आजमी के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म यादें से, आशा भोसले, उदित नारायण और सुखविंदर सिंह के स्वर थे। आनंद बख्शी की रचना को संगीत से सवारा था अनु मलिक ने। अगला गीत है कुमार सानू की आवाज में फिल्म कभी हाँ कभी ना से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं जतन ललित की धुन।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

आशा भोसले और उदित नारायण के युगल स्वरों में ये गीत था फिल्म प्यार तो होना ही था से। समीर की शब्द रचना थी, जतिन ललित की संगीत रचना। अगला गीत है फिल्म विरासत से जसपिंदर नरूला और कुमार सानू की युगल स्वरों में। जावेद अख्तर का गीत है, अनु मलिक का संगीत।

अलका याग्निक और उदित नारायण को आपने सुना फिल्म कभी खुशी कभी गम में। जतिन ललित की धुन पर बोल थे समीर के। इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ के साथ आइए सुनते हैं समाचार।

समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेतसेग बटमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि

0: नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलेंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीता पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वो तमिलनाडु में जल अधिकारों के लिए की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्मभूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ छात्र घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल द्वारा चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस वर्ष जनवरी में आधार ऐप शुरू होने के बाद 3,10,00,000 से अधिक लोगों ने इसे डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इस ऐप के बढ़ते इस्तेमाल से पता चलता है कि सेवाओं का लाभ शीघ्र उठाने में इसके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। ये मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में मिस ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत हमारी इस सभा में और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात्रि 9:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। संध्या 5:30 पर युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रहेगा युववाणी। इसमें आज चर्चा की जाएगी वर्षा वनों का महत्व विषय पर। साथ ही सुनवाई जाएगी वार्ता प्रमुख वायु प्रदूषक और उनका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। वार्ताकार होंगी मनस्वी आर्य। युववाणी कार्यक्रम के अन्य आकर्षण रहेंगे आज का सवाल, नई पहल, इतिहास के पन्नों से और चलते चलते। संध्या 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम्य लोक का। इस कार्यक्रम

आज हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता अपनी मिट्टी पहचाने। इसमें डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात करेंगे अनिंद्र सिंह। ग्रामीणों कार्यक्रम में आज चर्चा की जाएगी फार्मर रजिस्ट्री के लाभ विषय पर। साथ ही आप जान सकते हैं मंडी भाव, मौसम की जानकारी भी आप ले सकते हैं और लोकगीतों का आनंद भी उठा सकते हैं। मजदूर मंडल कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:30। इसमें आज चर्चा के विषय रहेंगे जल है तो हम है और सेहतनामा। मजदूर मंडल कार्यक्रम के अन्य आकर्षण रहेंगे घरेलू नुस्खे, आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, आज की पाती और फिल्मों से गीत। विविधा कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:10। इस कार्यक्रम में आज प्रसारित की जाएगी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता। विषय रहेगा करें योग रहें निरोग। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आप सुन सकते हैं संध्या 7:31 पर। और फिल्मों से गजलें हम आपको सुनवाएंगे शामी गजल में। कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30। और फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद आप सुन सकते हैं रात 10:00।

अब एक नजर कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ओर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर चिंतन के अंतर्गत हम प्रसारित करेंगे खलील जिब्रान के विचार। श्री रामचरित मानस गान आप सुन सकते हैं प्रतिदिन की तरह 6:35 पर और 6:45 का समय रहेगा कार्यक्रम खेती की बातें का। इस कार्यक्रम में कल हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता, मिट्टी की जांच प्रक्रिया और इसके लाभ। 7:10 पर कार्यक्रम रहेगा स्वास्थ्य चर्चा, जिसमें प्रसारित की जाएगी डॉक्टर हरेंद्र मोहनिया की वार्ता, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे। प्रातः 7:31 पर आप सुन सकते हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। सदाबहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का समय रहेगा 8:45 और 9:25 पर हम सुनवाएंगे आपको कार्यक्रम गीत मंजूषा। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरता आप सुन सकते हैं 10:00। कल पूर्वाहन 11:00 प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें बात की जाएगी अभिनेता राज बब्बर के बारे में और समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुन सकते हैं पूर्वाहन 11:30 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 5:10 हुए हैं, आइए आप सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

0: अभी आप सुन रहे थे चंदा और बिजली फिल्म का भजन। आवाज़ थी मन्ना डे की, बोल नीरज की थे और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। कहीं जाइएगा नहीं, हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल और अंतराल के उस पार होगा एक और भक्ति गीत।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: अगला भजन हमने लिया है मुकेश की आवाज में, बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है तीसरी कसम।

मुकेश की आवाज में अभी आप सुन रहे थे तीसरी कसम फिल्म का भक्ति गीत। अगला जो भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है सत्यम शिवम सुंदरम से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की, बोल हैं पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, इस फिल्म के भजन के बाद आइए अब सुनते हैं नीलकमल फिल्म से ये भजन, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत रवि का है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले के स्वर में नीलकमल फिल्म का ये भक्ति गीत। इसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा था रवि ने। इसी के साथ भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सरसंध्या अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी रेडियो होस्ट दीक्षा परिहार लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम युववाणी, जहाँ हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी युवा साथी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि पशु हमारे पर्यावरण और जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हीं में से एक है ऊंट, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। यह जटिल परिस्थितियों में भी मनुष्य का साथ देते हैं और कई सारे लोगों की आजीविका का भी आधार है। और इन्हीं के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हम एक विशेष दिन मना रहे हैं। तो दोस्तों, आप पता कीजिए कि आज वो कौन सा खास दिन है जो हम मना रहे हैं, और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं,

जो है वर्षा वनों का महत्व, यानी रेन फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में। दोस्तों, हर साल 22 जून यानी आज ही के दिन वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है वर्षा वनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके महत्व को समझाना। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, तब वर्षा वनों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। दोस्तों, जब हम जंगलों की बात करते हैं तो हमारे मन में घने पेड़ पौधों की तस्वीर उभरती है, लेकिन वर्षा वन यानी कि रेन फॉरेस्ट साधारण जंगलों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऐसे वन हैं जहां पूरे वर्ष पर्याप्त वर्षा होती है और जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर और समृद्ध रूप में दिखाई देती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के केवल लगभग 6% भूभाग पर फैले वर्षा वन पृथ्वी की आधे से अधिक जीव जंतुओं और पौधों की प्रजातियों का घर है। यही कारण है कि इन्हें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी कहा जाता है। साथियों, वर्षा वन हमारी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। ये वन बायोडायवर्सिटी के सबसे बड़े केंद्र माने जाते हैं, जहां लाखों प्रकार के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि रेन फॉरेस्ट को पृथ्वी के प्राकृतिक धरोहर भी कहा जाता है। वर्षा वन हमारे एनवायरनमेंट को बैलेंस बनाए रखने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन्हें अक्सर लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसके अलावा ये रेनफॉल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं और वाटर रिसोर्सेस को सुरक्षित रखने में भी मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, बढ़ते डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण रेन फॉरेस्ट का क्षेत्र लगातार कम होता जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और बायोडायवर्सिटी लॉस के रूप में देखने को भी मिल रहा है। आज ज़रूरत है कि हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के महत्व को समझें और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में अपना योगदान दें। हमारे छोटे छोटे प्रयास जैसे ट्री प्लांटेशन, पेपर वेस्टेज को कम करना और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए दोस्तों, यदि वर्षा वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहेगा और आने वाली जेनरेशंस को एक बेहतर और सस्टेनेबल फ्यूचर मिल सकेगा। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, जहां आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो साथी दीक्षा को। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि ऊंट के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आज हम कौन सा खास दिन मना रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड कैमल डे, और आइए अब सुनते हैं एक विशेष वार्ता जिसका विषय है प्रमुख वायु प्रदूषक और उनका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आज मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं।

0: आज हम कौन सा खास दिन मना रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका जवाब ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों, आज हम मना रहे हैं वर्ल्ड कैमल डे। और आइए अब सुनते हैं एक विशेष वार्ता जिसका विषय है प्रमुख वायु प्रदूषक और उनका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण आज मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इस वार्ता के जरिए हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण के मुख्य प्रमुख कारण क्या हैं और ये हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करते हैं। वार्ताकार हैं मनस्वी आर्य।
1: दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जिस हवा को हम हर क्षण अपने अंदर लेते हैं, वही हवा यदि जहरीली हो जाए तो हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ सकता है? हम भोजन के बिना कुछ दिन और पानी के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए स्वच्छ हवा हमारे जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि विकास और आधुनिक जीवन शैली की दौड़ में हमारी हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। ये प्रदूषण दिखाई नहीं देता, फिर भी धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं वायु प्रदूषण है क्या। वायु प्रदूषण वायुमंडल में ऐसे हानिकारक पदार्थों का मिल जाना है जो मनुष्य, पशु पक्षियों, पेड़ पौधों और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। प्राकृतिक कारणों जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, धूल भरी आंधी और जंगलों की आग से भी वायु प्रदूषण होता है, लेकिन वर्तमान समय में मानव गतिविधियां इसका सबसे बड़ा कारण बन चुकी हैं। बढ़ते उद्योग, वाहनों की संख्या में वृद्धि, कोल और पेट्रोलियम पदार्थों का अधिक उपयोग, कूड़ा जलाना, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल और पेड़ों की कटाई वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। अब आइए जानते हैं उन प्रमुख प्रदूषकों के बारे में जो हमारी हवा को जहरीला बना रहे हैं। सबसे पहला है पर्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10। पर्टिकुलेट मैटर यानी सूक्ष्म कण हवा में मौजूद धूल, धुएं और केमिकल सब्सटेंसेस के छोटे छोटे कण होते हैं। PM10 हमारे नाक और गले तक पहुंच सकते हैं, जबकि PM2.5 इतने छोटे होते हैं कि वे फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर रक्त में प्रवेश कर सकते हैं। इनके लक्षण हैं लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी, फेफड़ों की क्षमता में कमी और हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। ये मुख्य रूप से वाहनों के धुएं और ईंधन के अधूरे दहन यानी इनकम्प्लीट कम्बशन से निकलती है। ये हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता को कम कर देती है। इसके प्रभाव से लोगों को सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी, थकान महसूस हो सकती है। अधिक मात्रा में ये जानलेवा भी हो सकती है। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, जो मुख्य रूप से कोल और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के जलने से निकलती है। इसके कारण आंखों में जलन, गले में खराश, सांस संबंधी समस्याएं और अस्थमा के रोगियों की परेशानी बढ़ सकती है। ये एसिड रेन का कारण भी बनती है, जिससे पेड़ पौधों, जल स्रोतों और इमारतों को नुकसान पहुंचता है। अगला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो वाहन, बिजली संयंत्र और इंडस्ट्रियल यूनिट से निकलती है। ये फेफड़ों में सूजन पैदा कर सकती है और बच्चों तथा बुजुर्गों में सांस संबंधी रोगों का खतरा बढ़ा सकती है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि ओजोन दो प्रकार की होती है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करती है, लेकिन धरती की सतह के पास बनने वाली ओजोन हानिकारक होती है। इससे आंखों में जलन, गले में परेशानी, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है। लेड, मरकरी और विषैली धातुएं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से निकल सकते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से बच्चों के मस्तिष्क का विकास प्रभावित हो सकता है, नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, किडनीज पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि प्रदूषण केवल बाहर की हवा में होता है, लेकिन घर के अंदर की हवा भी प्रदूषित हो सकती है। इसके कारण है लकड़ी, कोयला या उपले जलाना, धूम्रपान, केमिकल क्लीनर, पेंट और परफ्यूम से निकलने वाले केमिकल्स। घर के अंदर का प्रदूषण

0: विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर सकता है। वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों और फेफड़ों की क्षमता में कमी ला सकता है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करके हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकता है। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क से मानसिक स्वास्थ्य और याददाश्त पर प्रभाव पड़ सकता है। शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो सकती है। बच्चे वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनके लंग्स अभी विकसित हो रहे होते हैं। बच्चों में सांस की समस्या, पढ़ाई और शारीरिक विकास पर प्रभाव, एलर्जी जैसी समस्याएं पड़ सकती हैं। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए प्रदूषण अधिक खतरनाक होता है। आजकल वायु की गुणवत्ता जानने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। AQI हमें बताता है कि हवा कितनी स्वच्छ या प्रदूषित है। जब AQI का स्तर बढ़ जाता है तो विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों को अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। वायु प्रदूषण का असर केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जलवायु परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और जीव जंतुओं का जीवन संकट में पड़ता है। यदि हवा जहरीली होगी तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि हम इस समस्या को कम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जैसे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा करें, सार्वजनिक परिवहन और साइकिल का उपयोग बढ़ाएं, वाहन की नियमित सर्विस करवाएं, कूड़ा और पत्तियां ना जलाएं, बिजली और ऊर्जा की बचत करें, सौर ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोत अपनाएं और लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करें। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, प्रदूषण नियंत्रण नियम बनाना और लोगों को जागरूक करना। लेकिन सरकार के साथ हमें भी प्रयास करने होंगे और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दोस्तों, स्वच्छ हवा केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारा अधिकार है। हमें याद रखना होगा कि प्रकृति हमें जीवन देती है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति की रक्षा करें। आज यदि हम एक पेड़ लगाते हैं, प्रदूषण कम करने का प्रयास करते हैं और दूसरों को जागरूक करते हैं, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार होगा।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था प्रमुख वायु प्रदूषक और उनका स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव। वार्ताकार थी मनस्वी आर्य। आइए अब आपको ले चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट नई पहल की ओर। तो साथियों, हम सभी जानते हैं कि जल के बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है, लेकिन आज देश के कई हिस्सों में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। नदियां और तालाब सिकुड़ रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे समय में जल संरक्षण केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बन गया है। इसी सोच के साथ जल संचय जन भागीदारी पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इस पहल का उद्देश्य केवल पानी बचाना नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के लिए जागरूक और सक्रिय बनाना है। जब आम नागरिक, ग्राम पंचायतों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब जल संरक्षण का अभियान अधिक प्रभावी बन जाता है। साथियों, इस पहल के अंतर्गत वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बारिश का पानी यदि सही तरीके से एकत्रित किया जाए तो उसे भविष्य में उपयोग किया जा सकता है और भूजल स्तर को भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा पुराने तालाबों, कुओं और जलाशयों का पुनर्जीवन, जल स्रोतों की सफाई और नए जल संरक्षण ढांचों का निर्माण भी इस अभियान का हिस्सा है। दोस्तों, भारत की परंपरा में वाटर कंजर्वेशन का विशेष महत्व रहा है। हमारे पूर्वजों ने बावड़ियों, तालाबों और कुंडों जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से वाटर कंजर्वेशन को आगे बढ़ाया और आज जरूरत है कि हम आधुनिक तकनीक के साथ साथ

0: इन पारंपरिक तकनीकों को भी अपनाएं। इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता है जन भागीदारी, यानी सरकार के प्रयासों के साथ साथ आम लोगों की सहभागिता। जब कोई व्यक्ति अपने घर में बारिश का पानी संचयन की व्यवस्था करता है, जब कोई किसान खेत में जल संरक्षण की तकनीक अपनाता है, या जब युवा जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाते हैं, तब ये पहल और अधिक मजबूत बनती है। दोस्तों, युवाओं की भूमिका इस अभियान में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का यूथ सोशल मीडिया, सामुदायिक कार्यक्रमों और स्वयंसेवी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को वाटर कंजर्वेशन के प्रति जागरूक कर सकते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस भी अपने लेवल पर वाटर कंजर्वेशन को लेकर कई तरह के प्रोग्राम्स आयोजित कर सकते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के दौर में जल संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। यदि हम आज जल को बचाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना पड़ सकता है। इसलिए हर एक नागरिक का यही कर्तव्य है कि वो जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझे और इसके संरक्षण में अपना योगदान दे। तो आइए दोस्तों, हम सभी मिलकर संकल्प लें कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, वर्षा जल संचयन को अपनाएंगे और वाटर कंजर्वेशन को जन आंदोलन बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जल है तो कल है और जल संरक्षण ही भविष्य की सुरक्षा है।
1: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदले प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

दोस्तों, इतिहास के पन्नों से सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं अब्राहम समझौते यानी अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में, जिसने पश्चिम एशिया की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। दोस्तों, अब्राहम समझौते पर 15 सितंबर 2020 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता मुख्य रूप से इसराइल, यूएई और बहरीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने के लिए किया गया था, जहां बाद में सूडान और मोरक्को ने भी इस पहल से जुड़े। इस समझौते का नाम पैगंबर इब्राहिम के नाम पर रखा गया, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मान प्राप्त है। इसलिए ये नाम विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दशकों तक पश्चिम एशिया में कई अरब देशों और इसराइल के बीच औपचारिक डिप्लोमेटिक संबंध नहीं थे। ऐसे में अब्राहम समझौते को क्षेत्रीय शांति और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इसके बाद संबंधित देशों के बीच दूतावास स्थापित किए गए, हवाई सेवाएं शुरू की गईं, व्यापार बढ़ा और पर्यटन, विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग को नई गति मिली। हालांकि इस समझौते को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण भी सामने आए। कुछ विशेषज्ञों ने इसे क्षेत्र में स्थिरता और आर्थिक विकास की दिशा में पॉजिटिव पहल बताया, जबकि कुछ ने माना कि पश्चिम एशिया के अन्य जटिल मुद्दों के समाधान की दिशा में अभी और प्रयासों की जरूरत है। फिर भी दोस्तों, इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब्राहम समझौते ने ये संदेश दिया कि संवाद, सहयोग और कूटनीति के माध्यम से लंबे समय से चली आ रही दूरियों को कम किया जा सकता है। इसी रोचक जानकारी के साथ इतिहास के पन्नों से सेगमेंट यही समाप्त होता है। अब दोस्तों, वक्त है आपको एक खास मैसेज देने का। तो दोस्तों, किसी की मदद करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की जरूरत नहीं होती। कई बार आपकी एक मुस्कान, एक अच्छा शब्द या थोड़ा सा समय भी किसी के जीवन में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। इसलिए किसी की मदद करने का अवसर मिले तो पीछे ना हटें। आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बड़ी खुशी बन सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी यहीं संपन्न होता है। अपनी होस्ट दीक्षा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

राम राम किसान भाइयों बहनों, आप सुन रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम ग्रामीणलोक। मैं हूं आपकी मित्र और आज के कार्यक्रम की प्रस्तोता उमा अली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पहल की जो किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसान और पारदर्शी तरीके से दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जी हाँ, आज का विषय है फार्मर रजिस्ट्री से लाभ। तो आइए जानते हैं फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है और इससे किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। साथियों, किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री एक डिजिटल व्यवस्था है जिसमें किसानों की भूमि, फसल और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रूप से दर्ज किया जाता है। इसका उद्देश्य किसानों का एक प्रमाणिक और अद्यतन डेटाबेस तैयार करना है ताकि योजनाओं का लाभ सीधे पात्र किसानों तक पहुंच सके। पहले कई बार ऐसा होता था कि किसानों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने पड़ते थे, कई योजनाओं की जानकारी भी समय पर नहीं मिल पाती थी, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री इस प्रक्रिया को आसान और तेज बनाती है। किसान साथियों, आप बात करते हैं फार्मर रजिस्ट्री के प्रमुख लाभों की। सबसे पहला लाभ है, जब किसी किसान का नाम फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज हो जाता है तो उसकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध रहती है। इससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि यंत्र अनुदान, बीज वितरण, खाद सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ देने में आसानी होती है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है, रजिस्ट्री के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकारी सहायता सही समय तक और सही किसान तक पहुंचे। इससे फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम हो जाती है और संभावना नगण्य हो जाती है और वास्तविक किसानों को प्राथमिकता मिलती है। तीसरा लाभ है, किसानों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम हो जाती है। कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होने से समय और यात्रा खर्च दोनों की बचत होती है। किसान भाइयों बहनों, फार्मर रजिस्ट्री का एक और बड़ा फायदा है कृषि संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त करना। रजिस्टर्ड किसानों को मौसम, फसल प्रबंधन, उन्नत कृषि तकनीकों और सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी समय समय पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे किसान बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य संकट की स्थिति में सरकार को प्रभावित किसानों की पहचान करने में आसानी होती है, जिससे राहत और मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। कृषि ऋण प्राप्त करने में भी फार्मर रजिस्ट्री उपयोगी साबित हो सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थान किसानों के रिकॉर्ड का सत्यापन आसानी से कर पाते हैं, जिससे ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल और आसान हो जाती है। अब प्रश्न यह है कि किसान फार्मर रजिस्ट्री कैसे करवा सकते हैं। इसके लिए किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, कृषि विभाग के कार्यालय या सरकार द्वारा निर्धारित पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय सामान्यतः आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी की जरूरत पड़ सकती है। अलग अलग राज्यों में प्रक्रिया में कुछ अंतर हो सकता है, इसलिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से सही जानकारी अवश्य प्राप्त करें। यह भी जरूरी है किसान भाइयों कि किसान अपनी जानकारी सही साझा करें। यदि भूमि, मोबाइल नंबर या अन्य विवरण में कोई बदलाव हो तो उसे समय पर अपडेट कराना चाहिए। इससे भविष्य में योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं रहती। किसान साथियों, आज कृषि क्षेत्र तेजी से डिजिटल हो रहा है। ऐसे समय में फार्मर रजिस्ट्री किसानों को नई तकनीक और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। ये केवल एक पंजीकरण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि किसानों की पहचान को मजबूत करने और उन्हें योजनाओं से सीधे जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इससे न केवल प्रशासनिक व्यवस्था बेहतर होती है बल्कि किसानों का समय, श्रम और संसाधन भी बचते हैं। यदि आपने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है तो अपने नजदीकी केंद्र पर जाकर जानकारी प्राप्त करें, पंजीकरण अवश्य कराएं, इससे आप विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ समय पर प्राप्त कर सकेंगे। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि फार्मर रजिस्ट्री क्या है, इससे किसानों को किस प्रकार लाभ मिल सकते हैं। याद रखिए, सही जानकारी और समय पर पंजीकरण आपके लिए अनेक अवसरों के द्वार खोल सकता है। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं ये मधुर लोकगीत। मगर हाँ, आप कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि इस गीत के बाद हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे और फिर कुछ और विषयों पर बात करेंगे।

0: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर तबस्सुम सलीम की आवाज़ में ये भजन। किसान साथियों, मिट्टी केवल धरती का एक हिस्सा नहीं बल्कि हमारी खेती की नींव और हमारी फसलों की जीवनदायिनी शक्ति है। जब हम अपनी मिट्टी को समझेंगे, उसकी ज़रूरतों को जानेंगे, तभी कम लागत में अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी का सपना साकार होगा। तो आइए आज की वार्ता में जानते हैं क्यों आवश्यक है मिट्टी परीक्षण, कैसे लेते हैं खेत से मिट्टी का नमूना और क्या फायदे हैं इसके, क्योंकि अच्छी खेती की शुरुआत होती है अपनी मिट्टी पहचानने से। और यही विषय है आज की वार्ता का, अपनी मिट्टी पहचाने। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से भेंट कर रहे हैं अनिल सिंह।
1: किसान साथियों नमस्कार, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में कृषि विज्ञान केंद्र आवागढ़ से मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान के लिए, चूंकि मिट्टी ही सब कुछ है, किसान की फसल मिट्टी से ही आती है, तो मिट्टी की केयर करना किसान का दायित्व है। लेकिन किसानों को जानकारी नहीं होती कि मिट्टी के बारे में कैसे जानें। तो आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप किसानों को इस बारे में बताएं कि मिट्टी की जांच करवाना और मिट्टी की सेहत के बारे में जानना किसान के लिए कितना जरूरी है।
2: क्योंकि आपने जो है किसानों के उस बिंदु को छुआ है जिसको किसान बहुत लंबे समय से कर तो रहा है लेकिन उसकी बारीकियों को बिल्कुल भूलता जा रहा है।
1: जी,
2: किसान लगातार उत्पादन ले रहा है, अधिक पैदावार देने वाली प्रजातियों को बो रहा है, सारे साधन टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, पानी के साधन अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन जो उसकी मृदा है, जो एक जीवित बोली जाती है, उसको वो भूल गया है।
1: जी,
2: क्योंकि
1: जी।
2: उसके अंदर बहुत सारे अरबों खरबों की संख्या में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, पौधे की आवश्यकता के सारे तत्व मौजूद हैं, पौधे की बढ़वार के लिए पूरा माहौल उसके अंदर मौजूद होना चाहिए।
1: जैसे हमारे शरीर की बढ़वार के लिए उसकी ताकत जो है वो खाना है।
2: जी,
1: तो हमारी जो किसान की फसल जो पैदा होके आती है उसको जो चाहिए वो मिट्टी से मिलता है।
2: मिट्टी के अंदर वो माहौल होना चाहिए।
1: जी जी।
2: जैसे कि मिट्टी के अंदर पानी को रोकने की क्षमता होनी चाहिए।
1: जी।
2: पौधे की आवश्यकता के सभी तत्व कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, पौधे की आवश्यकता के अनुसार होने चाहिए।
1: जी।
2: किसान भाइयों ने क्या करा कि पहले पौधे का सबसे पहले भोजन कार्बनिक पदार्थ को अब देना किसान ने कम कर दिया और रासायनिक खाद के ऊपर आ गया।
1: जी। उपज लेने के चक्कर में

0: ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग बढ़ गया।
1: उसमें भी उसने एक भूल करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो संतुलित मात्रा में न लगा के किसी एक खाद को बहुत ज्यादा लगा रहा है और किसी को बिल्कुल नहीं लगा रहा। उसकी वजह से जो संतुलन है तत्वों का वो बिगड़ता जा रहा है। अपनी मिट्टी को किसान को पहचानना चाहिए, क्योंकि अगर किसान जानता है पूरी तरीके से कि मेरे खेत के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, उसी हिसाब से उसे फसल लेनी चाहिए और उसी हिसाब से अपने रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जब किसी एक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग जरूरत से ज्यादा करता है तो वो रासायनिक उर्वरक उसके खेत में लाभ की बजाय हानि पहुंचाता है, क्योंकि वो दूसरे तत्वों को प्रभावित करता है और जब एक तत्व को प्रभावित करता है तो उसकी कमी से तरह तरह के रोग फसल पे आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अति आवश्यक है कि किसान भाई वर्ष में एक बार अपनी मिट्टी की जो है जांच जरूर करा लें।
0: जैसे कि डॉक्टर बोलता है हमें कि अपने शरीर की रेगुलर चेकअप आप कराते हैं, तो वही किसान के साथ है कि अपनी खेत की मिट्टी की रेगुलर चेकअप जो है वो करानी बहुत
1: है। इसकी वजह से कई सारे रोग आ रहे हैं। आज देखिए कि जिंक की जिन क्षेत्रों में कमी है, पहले नहीं थी, वहाँ पे कह रहे कि धान के अंदर खैरा रोग आ रहा है
0: जी,
1: मक्का में सफेद कली रोग आता है, मूंग और आलू में दूसरे भूरे रंग का रोग आता है, बोरोन की कमी से कितने कमी आ रहे हैं, फल पटने लग रहे हैं
0: जी जी,
1: आलू पे चेचक जैसी माते निकल रही है, तरह तरह की बीमारी आ रही है, आयरन की वजह से सफेदिया रोग आ रहा है, डायबिटीज रोग लग रहा है।
0: जो पोषक तत्वों का असंतुलन पैदा हो गया है उसकी वजह से
1: उसकी वजह से रोग लग रहे हैं और किसान उसको बीमारी समझ के दवाई ला के प्रयोग करता है, लेकिन उसको उसका लाभ नहीं मिलता। अगर वो दवाई उस तत्व से मिली हुई है तो थोड़ा बहुत आंशिक लाभ देगी, अन्य किसी तत्व की कमी को कोई दवाई पूरी नहीं कर सकती और उसको जो है लोस ही उठाना पड़ता है।
0: प्रधानमंत्री की बार बार ये कोशिश है कि देश का किसान जो है वो समृद्ध हो, और उसकी समृद्धि के लिए जरूरी है कि उसकी फसल उत्पादन बढ़े, और फसल उत्पादन के लिए जरूरी है कि उसका खेत जो है वो पोषक तत्वों से भरपूर हो।
1: बिल्कुल सही कहा आपने जी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से इस अभियान को चलाए हुए हैं कि अपनी मिट्टी का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जरूर बनवा लें। बहुत कम शुल्क लगता है, गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है
0: जी,
1: और इस काम को करने में कुछ किसान को नहीं करना है, उसको सिंपल सा काम करना है, अपने खेत में जैसी फसल कट जाती है, यानी कि आपका मई जून का समय बहुत उत्तम है
0: जी,
1: इस समय अपने खेत में से एक मिट्टी का नमूना लेकर और कोई भी पास की जो मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला है वहाँ पे अपना पहुँचा दें।
0: ये सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध
1: सब सूक्ष्म तत्वों का परीक्षण भी
0: जी
1: हर कृषि विज्ञान केंद्र पे उन्होंने उपलब्ध करा दिया है।
0: तो अब ये किसान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी मिट्टी की जांच करवाए, अपने मिट्टी में क्या पोषक तत्व हैं और क्या नहीं है उनकी जानकारी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अपने मिट्टी के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड वो है जो मेंटेन कर सकता है।
1: खेत के कटने के बाद में एक नमूना लेते हैं, नमूना लेने का बहुत सिंपल है, नमूने का मतलब ये है कि जैसा नमूना है अधिकांश खेत आपका उस नमूने जैसा होना चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए आपको थोड़ा सा रखना है ध्यान, जैसे किसी पेड़ के पास से ना लें, नाली के पास से ना लें, सड़क के किनारे से ना लें, या खेत में कोई कोना बहुत ऊंचा और कोई बहुत गहरा है तो दोनों में अलग अलग नमूना लें। यानी कि अगर आप गहरे से लेंगे तो गहरे की मिट्टी में जो है उर्वरता ज्यादा होगी, ऊपर लेंगे तो वहाँ पे मिट्टी आपकी उर्वरता में कमजोर होगी
0: जी जी।
1: तो इस तरीके से आप एक नमूना लेंगे, नमूना लेने के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं करना है, कहीं भी घूमते हुए आप ले लीजिए मेड़ के अंदर से जाके, और उसको एक आप सुतरी थैली में मिला के 400-500 ग्राम मिट्टी का नमूना आपको लेना है
0: जी,
1: और वो पौधे की आवश्यकता अनुसार गहराई से लेना। जैसे आपको धान गेहूं मक्का बाजरा करना
0: जी,
1: तो आपको 6 इंच तक यानी 15 सेंटीमीटर गहराई तक का ही नमूना काफी है,
0: जितनी गहराई तक वो पेड़ आपका पहुंचता है
1: इसी तरीके से आपको गन्ना करना है, अरहर करना है, कपास करनी है तो ये आपको 9 इंच गहराई तक लेना है
0: जी।
1: अगर आपको बाग करना है तो आपको 2 मीटर की गहराई तक।
0: ये तो किसान को अपने आप समझने की जरूरत है, कौन सी फसल है तो वो कितनी गहराई तक जाती है और हमें कितनी गहराई तक मिट्टी नमूना की, नमूने की जो है जांच करवानी है।
1: उस नमूने को किसान भाई एक जगह अच्छी तरह से मिला लें और मिलाने के बाद में उस नमूने के अंदर पूरी तरीके से रख दें कि किसान का नाम, पिता का नाम क्या है, आपका गांव, डाकखाना, ब्लॉक, जिला और खेत का खसरा नंबर जरूर डालें
0: जी, अपनी सारी डिटेल्स उसमें
1: डिटेल लिख दें। ये भी लिख दें कि आपने पहले फसल कौन सी ली थी, आपने गेहूं किया था, सरसों की थी, और दूसरी आने वाली फसल कौन सी लेंगे
0: जी?
1: आप धान करना चाहते हैं, बाजरा करना चाहते हैं,
0: उसी हिसाब से फिर कृषि वैज्ञानिक या मृदा विशेषज्ञ जो है वो कौन से तत्व की उसमें कमी है और कौन से तत्व की आगे जरूरत पड़ेगी
1: उसी हिसाब

0: आपसे फिर उर्वरक है या खाद है उसी की जानकारी के हिसाब से आगे आपको रिकमेंड करेंगे।
1: इसमें एक चीज और जानकारी किसान भाई को जरूर लिखनी चाहिए कि आप जो है संकर प्रजाति का प्रयोग करने के उसमें है या आप संकुल के में है।
0: जी जी।
1: संकर प्रजाति की पैदावार अधिक है तो उसकी जो है रासायनिक उर्वरक की जो खाद की मात्रा है वो भी उसको अधिक चाहिए,
0: ज्यादा चाहिए।
1: तो ये चीज किसान भाई बताएंगे तो जो परीक्षण के आधार पर रिपोर्ट आएगी उसमें केवल किसान का उतना ही पैसा खर्च होगा जितना अति आवश्यक है।
0: जी।
1: उसका अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा, उसका बदले में क्या मिलेगा उसे कि उस प्रजाति की उस वैरायटी की जो पैदावार देने की अधिकतम
0: क्षमता है
1: उसके बराबर उसको पैदावार
0: आपको कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार
1: ज्यादा ज्यादा और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी ना तो आपका ये जो है जल्दी से उसका भंडारण में खराब होगा, मार्केट में भी उसकी चमक बढ़िया होगी
0: जी,
1: अच्छी तरीके से उसको पैदावार का जो है पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, किसान भाई एक गलती करते हैं कि उसी दिन सैंपल लिया और उसे दो दिन बाद बुवाई कर रहे हैं। आपकी मिट्टी की जांच के लिए कम से कम लेबोरेटरी में 20-25 दिन लग जाते हैं।
0: तो किसानों को चाहिए कि वो ठीक से प्लान करें कि जब उन्होंने फसल काटी वो फटाफट उसका जो
1: नमूना
0: है वो लैब में भेज दें और जैसी रिपोर्ट है उसके हिसाब से ही अपनी फसल को
1: उसमें लगाएं। एक चीज और है सर, इस पर किसान भाई ध्यान नहीं देते
0: जी,
1: आपकी जमीन के अंदर कई तरह के अवगुण जिसे कहते हैं कि बीमार मृदा
0: जी,
1: कहीं पे पानी के अंदर कुछ तत्वों की अधिकता हो रही है, कुछ धीमे धीमे पड़े पड़ी अपने धीमे से साल्ट या लवण ऊपर आ रहे। किसान भाई लवण वाली बीमारी को खेत के अंदर बढ़ने देते हैं
0: जी,
1: और जब खेत जो है किन्हीं फसलों को छोड़ना शुरू कर देता है,
0: जब बिल्कुल ये स्थिति आ जाती है कि फसल उसमें हो ही नहीं रही,
1: हो ही नहीं रही,
0: जो है
1: पड़ रही है, बीमार पड़ रही है, तभी वो किसान भाई इस बात की चिंता करता है कि मेरे खेत में क्या बात हो गई, तब उसका परीक्षण आता है। तो जब आप परीक्षण कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा खेत नॉर्मल है या इसके अंदर किसी भी नुकसान देने वाले तत्व या लवण की अधिकता तो नहीं हो रही
0: जी।
1: अगर उसकी अधिकता हो रही है तो इस समय कम खर्चे में आसानी से उसको मृदा सुधारक के द्वारा सुधारा जा सकता है
0: जी जी।
1: जैसे जिप्सम लगाएंगे आप, सल्फर लगाएंगे आप, या आप जो है गोबर की खाद डालेंगे।
0: किसान को अपनी भूमि को अपनी मृदा को पहचानते हुए उसके अनुसार फसल से उत्पादन लेने की जरूरत है। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी मिट्टी के बारे में जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता जिसका विषय था अपनी मिट्टी पहचाने। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से भेंट कर रहे थे अनिंद्र सिंह।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: साथियों, हम जानते हैं मंडी भाव। प्याज का भाव रहा 820 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल, टमाटर 2000 से 2020 रुपए, हरी मिर्च 1420 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल। अनाज में मक्का का दाम रहा 1620 से 1622 रुपए, साबुत चना दाल 8441 से 8461 रुपए, मटर सूखी 3800 से 3850 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये था किसान साथियों मंडी भाव, और अब जान लेते हैं मौसम की जानकारी भी। किसान साथियों, आगरा व उसके आसपास का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हुई। कल भी मौसम लगभग ऐसा ही रहने का अनुमान है, अधिकतम तापमान 40 डिग्री व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है। बादल छाने, तेज हवाएं चलने तथा कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। बारिश निश्चय ही कल होगी, लेकिन अभी हम आनंद लेते हैं इस लोकगीत का।

इसी के साथ आप दीजिए अपनी रेडियो दोस्त उमा अली को अनुमति। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे खेती से जुड़ी नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, खुश रहें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक भाई बहनों को कल्पना सरकार का नमस्कार। तो बताइए साथियों, ये तपती झुलसती गर्मी कैसी लग रही है आपको? ये भी कोई पूछने की बात है, सब परेशान है। उफ़ ये गर्मी साथियों, सुबह से ही लगता है कि सूर्य देव अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं, तमतमा रहे हैं। दिल करता है कि बस घर के अंदर ही रहें, घर के भीतर भी आराम कहाँ। गर्म हवाएं परेशान कर रही हैं, पंखा बंद करने का दिल करता है। इस गर्मी ने ना साथियों जीना दुश्वार कर दिया है, ना दिन को चैन ना रात को आराम। ऐसे में सोचिए, हमारे जो श्रमिक बंधु हैं, श्रमिक साथी हैं, उन्हें तो धूप में भी काम करना पड़ता है। देखिए, कुछ दिनों के बाद बरसात होगी, तो बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ से छत से पानी लीक होता है, टपकती है, तो ऐसे में

बहुत सारे लोग मरम्मत करवा रहे हैं। सोचिए छत पर कितनी तेज धूप होगी, ऐसे में वो काम कर रहे हैं साथियों। यहाँ तक कि देखिए इन दिनों हैंडपम्प से या समरसेबल से पानी नहीं आता है गर्मी के कारण। ऐसी गर्मी में सोचिए श्रमिक साथियों, हमारे जो श्रमिक बंधु हैं काम करते हैं, कितनी मुश्किल से काम कर रहे होंगे, लेकिन वो करते हैं, पसीने से लथपथ हो जाते हैं तब भी करते हैं साथियों। हैंडपम्प से याद आया कि कभी ये सोचा है ये हैंडपम्प समरसेबल पम्प में पानी क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, हो सकता है कुछ खराबी आई होगी, लेकिन ये भी सच है दिन ब दिन भूमि का जल स्तर कम होता जा रहा है, पानी की परेशानी हो रही है। मुंबई जैसे कई ऐसे शहर हैं साथियों जहाँ पानी लोगों के घर में एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, सोचिए। और ऊपर से स्वच्छ पानी जो पीने का होता है वो भी उपलब्ध नहीं हो रहा है, कोसों दूर आज भी लोगों को जाना पड़ता है। और भारत की स्थिति क्या है आज पता है पानी के मामले में? आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में जल संकट आज देश की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास मात्र साथियों 4% ही मीठे जल का संसाधन है। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है, जिससे डे जीरो जैसी स्थिति का खतरा बढ़ रहा है। डे जीरो यानी हमारे पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचेगा, नल बंद कर दिए जाएंगे। सोचते ही डर लगने लगा है ना कि भाई जल के बिना हम कैसे जिएंगे, जल के बिना जीवन की कल्पना संभव ही नहीं है। ऊपर से प्रदूषित जल ने हमें बीमार कर रहा है ये जल। साथियों जल है तो हम हैं, हमारा कल है, बताइए इस पानी का उपयोग कहाँ नहीं करते हम? दैनिक दिनचर्या में करते हैं, है ना, कृषि में हो रहा है, उद्योग के क्षेत्र में हो रहा है, विद्युत उत्पादन की बात हो तो वहाँ पर भी जल का उपयोग होता है, पानी का इस्तेमाल होता है। इसलिए पानी की हर एक बूंद बचानी है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना होगा। लेकिन देखा ये जाता है ना जल के मामले में हमारे जो भारतीय लोग हैं बड़े लापरवाह होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, निःशुल्क मिल रहा है तो कोई मूल्य नहीं है उनके लिए। अब देखिए एक बहन है, क्या करती है, रात का पानी भर लेती है तो सुबह उसे बासी पानी मानकर ना वो फेंक देती है। अब बताइए आप ढक्के रखिए ना उसको, बासी क्यों समझना है, काम में झाड़ू पोछा बर्तन में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो पानी की बर्बादी को रोकना होगा, एक एक बूंद को बचाना होगा, उसके महत्व को समझना होगा। हाँ, यदि आपकी पाइप से पानी टपक रहा हो तो आप उसे भी तुरंत ठीक कराएं। नदियों को नहरों को प्रदूषित होने से भी बचाना है साथियों, और पेड़ लगाने होंगे ताकि वर्षा हो, मिट्टी का बहाव ना हो, वर्षा जल का संरक्षण करना होगा ताकि हमारी धरा हरी भरी हो जाए, नदियाँ हमारी नदियाँ लबालब रहें और हमारा कल सुरक्षित हो। वैसे पेड़ जैसे कि कहा वर्षा कराने में मदद करते हैं ना, तो वर्षा की बात होती है ना साथियों, बड़ा दिल कर रहा है कि भाई बारिश हो जाए, तन मन को सुकून मिले। वैसे जब बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं ना, झमाझम बारिश होती है तो मन यही गुनगुनाता है।

साथ ही हम तो यही कहेंगे भाई, बरसो रे मेघा बरसो। यही तो आश किए हुए हैं हम लोग कि भाई बारिश हो जाए, थोड़ी सी शीतलता मिल जाए, थोड़ी ठंडक मिल जाए, लेकिन बादल ना जाने कहाँ गायब हो गए हैं। वैसे मौसम की जो जानकारी देता है ना साथियों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देता है, तो आज का प्रश्न

आपसे यही है कि ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है, इसका मुख्यालय और कब इसकी स्थापना हुई है? आप सोचिए, इसका उत्तर इसी कार्यक्रम में ही मिलेगा। कब? देखिए, इसके लिए तो आपको हमें सुनते रहना होगा ध्यान से, लेकिन अभी क्या करें साथियों। देखिए, बात हो रही थी जल को स्वच्छ रखना है, बचाना है, पेड़ पौधों को लगाना है ताकि बारिश हो। वैसे आपको पता है साथियों, बारिश कराने में वर्षा वन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। और दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन कौन सा है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दक्षिण अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो दुनिया के

में फैला हुआ है, जो दुनिया के कुल वर्षा वनों के क्षेत्रफल का आधे से अधिक हिस्सा है। और ये सघन वन क्षेत्र पृथ्वी का लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। मालूम है साथियों, ये वन ना हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ये वर्षा वन, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े माने जाते हैं। क्यों भाई? ऑक्सीजन जो देते हैं, जलवायु और तापमान को नियंत्रित रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भारी मात्रा में अवशोषित करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया से ये वन वायुमंडल में नमी छोड़ते हैं, जिससे बादलों का निर्माण होता है और निरंतर वर्षा होती है। फिर साथियों, जहाँ वर्षा वन होंगे ना, वहाँ तो हरियाली होगी, जैव विविधता पाई जाएगी। और इन वर्षा वनों में पौधों और जानवरों की लाखों प्रजातियाँ निवास करती हैं। जी हाँ, उनका आशियाना होता है। और इसमें तो ऐसी कई पेड़ भी हैं जो औषधि गुण से भरपूर होते हैं, और आधुनिक दवाइयों का निर्माण में भी ना इन वनों में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। फिर ये वन प्राकृतिक स्पंज के रूप में काम करते हैं, ये बाढ़ सूखे से बचाते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जल को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं। वर्षा वन की उपयोगिता को देखते ही साथियों, आज हम मना रहे हैं विश्व वर्षा वन दिवस। मकसद पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखना है, जलवायु परिवर्तन को कम करना है, और उसकी जो जैव विविधता है ना हमारी धरती की, उसकी रक्षा करनी है। वैसे साथियों, हमारा जो इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में ना पेड़ हो या चूहा या तितली या शेर, हर एक जीव का महत्व होता है। ऊँट भी, जी हाँ ऊँट भी। ये ऊँट पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में, रेगिस्तान मिट्टी को खराब होने से बचाने में, स्थानीय वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। कैसे? फिर वही प्रश्न तो बताते हैं ना। देखिए, अब मृदा संरक्षण की बात करें तो देखिए, ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जो रेत में घसते नहीं हैं, जिसके कारण रेतीली मिट्टी का कटाव रुकता है, मिट्टी की सेहत बनी रहती है। यहाँ तक कि ऊँट जब पौधे और जो पौधे झाड़ियाँ खाते हैं ना, तो उनके मल या गोबर के माध्यम से बीजों का फैलाव होता है, जो प्राकृतिक रूप से पौधों के पनपने में मदद करता है। फिर ऊँट ऐसे कांटेदार सूखे पौधे भी खा लेते हैं जिन्हें अन्य जानवर नहीं खा सकते, जिससे कुछ खास किस्म के पौधों का अत्यधिक फैलाव रुकता है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। तभी तो हम कह रहे हैं कि इस धरा का हर जीव महत्वपूर्ण है, ऊँट भी है। इसलिए इसके संरक्षण के लिए, इस जीव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही हर साल, यानी आज के दिन, हम विश्व ऊँट दिवस भी मनाते हैं। फिर रेगिस्तान के अन्य जीव, कोई अन्य जीव ऊँट की तरह चल पाएगा, दौड़ पाएगा? नहीं ना, तभी तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। वहाँ के आम लोगों के जीवन का ये हिस्सा है। ये जीव परिवहन में भी इस्तेमाल किया जाता है, हजार लोगों को आजीविका का ये साधन भी है। वैसे साथियों, जब हमें रोज़गार मिल जाता है ना, तो हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, और आर्थिक रूप से मजबूत हुए नहीं कि मन खुश हो जाता है, खुशी हमारे चेहरे में दिखाई देती है, मन में झलकती है, होठ में खुशी के गीत भी तब हम गुनगुनाते हैं।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों अब चलेंगे हम ऐसे सफर में जहां सेहत की बातें होती हैं। साथियों आपको याद है हमने प्रोटीन के बारे में बताया था कि प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, उसकी मरम्मत करता है। एक बार सेहतनामा में बताया था ना, ये ज़रूर याद होगा। लेकिन प्रोटीन तभी भली

प्रकार से काम करेगा साथियों, जब आप फाइबर को अपने भोजन में उचित मात्रा में लेंगे। साथियों फाइबर ना आंतों को स्वस्थ रखता है, इससे खाया हुआ प्रोटीन शरीर में अच्छी तरह से ऑब्जॉर्ब यानी पच जाता है, अवशोषित हो जाता है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं जिसमें मांस अंडे जैसी चीज़ें, उसे पचाने में ना शरीर को समय लगता है। यदि हम अपने भोजन में फाइबर नहीं खाते हैं तो एसिडिटी, गैस, पेट फूलने जैसी समस्या हो जाती है ना। तो साथियों इससे याद आया, आप में से कौन से ऐसे श्रमिक साथी हैं ये ज़रूर ईमानदारी से बताइएगा कि आपने कुछ खाया नहीं कि आपका पेट फूल जाता है, अपच की समस्या आपको लगती है, कब्ज की समस्या आ रही है, पेट से जुड़ी समस्या आ रही है। यदि इसका उत्तर आपको लगता है कि हाँ ये सारी शिकायत हो रही है, तो आप सोचिए कि आपके भोजन में फाइबर कम है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। जैसे कि कहा, हमारे भोजन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है साथियों। फायदे तो अनगिनत, कब्ज से राहत तो देता ही है, लेकिन यदि आप वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको नियंत्रित रखना चाहते हैं, तो फाइबर को भोजन में शामिल करना होगा, क्योंकि फाइबर खाने से ना आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। यानी पतला जो होना चाहता है फाइबर का इस्तेमाल कीजिए, अपने पेट को स्वस्थ रखना चाहता है फाइबर अपने भोजन में शामिल कीजिए, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो आपके हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और रक्त में शुगर के स्तर को भी संतुलित रखता है। आंतों को सेहत, आंतों की जो सेहत होती है उसको तो बेहतर बनाता ही है, शरीर से अपचित पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये हमारे हमको स्वस्थ रखता है, लेकिन पाया किसमें जाता है भी साथियों, फल सब्जियों में, साबुत अनाजों में, फलियों में, मेवे जो हैं बीजों में पाया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को खाइए। हाँ, आज का प्रश्न का उत्तर भी तो आप जानना चाहेंगे। देखिए हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आपको याद है ना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसकी स्थापना साथियों 15 जनवरी 1875 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और अब आज की पाती में साथियों एक श्रोता है जो सब्जी बेचते हैं और उनकी चाहत है कि हम उनकी पसंद का गीत सुनवाएं, तो सुनिए। जिंदगी का हर दिन खास है, बस नज़रिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को उसका कल भी उसके साथ है, तब एहसास नहीं होगा कि जिंदगी एक पहेली है।

साथियों, माना कि ज़िंदगी एक पहेली ज़रूर है, लेकिन खुशियों की सौगात भी तो है। तो बस खुश रहिए और हमें सुनते रहिए। लेकिन अभी कल्पना सरकार को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने सांसद संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊ साहेब वाकचौरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश राजे निम्बालकर का पार्टी में स्वागत किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए, उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया। संवाददाताओं से बातचीत में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि दमकलकर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में फंसे लोगों की तलाश कर रहे हैं। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला शासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और निकासी अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
1: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: मुख्यमंत्री अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौट आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग की घटना पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इस भयानक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। उपराष्ट्रपति ने भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो दो

0: लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बातार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्से तेसेग बटमुंग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकतानुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा कि वह तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एसएनएससी के रक्षा मामलों के उप सचिव गादिर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. In Uttar Pradesh, 14 students lost their lives after a massive fire broke out at a coaching center located inside a commercial complex in Lucknow's Aliganj area this afternoon. Several injured persons have been admitted to nearby hospitals. The blaze reportedly started inside the institute building and spread rapidly through the complex, which houses coaching centers, showrooms and a gaming zone, triggering panic among students. Fire brigade teams, police personnel and district administration officials are conducting rescue and evacuation efforts. Talking to media, Deputy Chief Minister Brajesh Pathak said that 14 students aged between 16 to 18 years who were present at the animation center in the building lost their lives. He said that firefighters are searching for students in the corners, washrooms and other areas of the building. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath spoke to the Director General of Police and the Additional Chief Secretary Home, directing them to ascertain the cause of the fire and closely monitor the ongoing rescue and relief operations. He said those found responsible for the incident would face strict action. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief of the loss of lives in the fire mishap in Lucknow. In a social media post, the President said the death of people in the horrific fire accident is extremely heartbreaking. She expressed condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured. Vice President also paid condolences to the bereaved families and prayed for the swift recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi today expressed grief over the loss of lives in a fire mishap in Lucknow at Uttar Pradesh. In a social media post, announced an exgratia of 2 lakh rupees from Prime Minister National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured will be given 50,000 rupees. Prime Minister Narendra Modi today said that the changes that have taken place over the past 12 years have succeeded in strengthening people's faith in governance and administration. Prime Minister said this while sharing an article written by Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal in a social media post. The BJP-led West Bengal government today presented its first full budget for 2026.

0: 2027 with a strong focus on social welfare, infrastructure development and employment generation. The budget also announces several women-centric initiatives. Presenting a deficit budget of 6,070 crore rupees, Finance Minister Swapan Dasgupta described it as a roadmap for building a developed Bengal. He said the state's outstanding debt has crossed 8 lakh crore rupees, making financial discipline a key priority. The government also proposed a 20% additional hike in dearness allowance for government and semi-government employees, teachers and teaching staff. Shiv Sena leader and Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde today announced that 6 Lok Sabha MPs from the Shiv Sena UBT faction have joined the Shiv Sena. Addressing a press conference in Mumbai, Mr. Shinde welcomed the MPs Sanjay Dina Patil, Sanjay Deshmukh, Sanjay Jadav, Bhav Saab Wakchaure, Nagesh Patil Astikar and Om Prakash Raje Nimbalkar into the party. The two-day BRICS National Security Advisors meeting began in New Delhi today. The meeting, being chaired by the National Security Advisor Ajit Doval, brings together security chiefs from the bloc's 11 member countries. These include India, Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. The discussion includes the rapidly evolving nature of national security challenges, as well as the role of new technologies in emerging security threats. UK Prime Minister Keir Starmer has announced his resignation from the post and as the leader of the Labour Party, ending his tenure at the Downing Street amid growing internal pressure from his own party. Delivering his resignation statement, Mr. Starmer recalled his arrival at Downing Street 2 years ago as the proudest moment of his life.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete.
0: In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Australia in the Group J fixture tonight at Arlington in the US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 7:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता, करें योग रहें निरोग।
3: करें योग रहें निरोग। योग है चित्त वृत्ति निरोग है। चित्त की वृत्ति का निरोग बनाना योग का आशय है। सामान्यतः योग को मन तथा आत्मा से समझा जाता है, लेकिन पतंजलि में मन तथा शरीर को एक ही मानते हैं। भारतवर्ष में आध्यात्मिक प्रक्रिया को योग कहते हैं, जिसमें शरीर और मन आत्मा को एक साथ लाने का प्रयास करता है। यह शब्द प्रक्रिया और धारणा ध्यान प्रक्रिया से संबंधित है। योग शब्द बौद्ध धर्म के साथ चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका आदि में भी फैला हुआ है। इस समय सारे सभ्य जगत में योग से लोग परिचित हैं। इतनी प्रसिद्धि के बावजूद भी इसकी परिभाषा सुनिश्चित नहीं हो पाई है। भगवत गीता प्रतिष्ठित ग्रंथ माना जाता है। इसमें योग शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, कभी अकेले, कभी सविशेषण, जैसे बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग। वेदोत्तर काल में भक्ति योग और हठ योग नाम भी प्रचलित हुए हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार क्रिया योग देखने को मिलता है। इन सब स्थलों में योग शब्द के अर्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। इन सब प्रयोगों को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि योग की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से मुक्त हो, योग शब्द के वाच्यार्थ का ऐसा लक्षण बतला सके जो योग के प्रत्येक प्रसंग के लिए उपयुक्त हो। गीता में कृष्ण ने एक स्थान पर कहा है, योग है कर्मस कौशलम, अतः कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि जीवात्मा एवं परमात्मा के मिल जाने को योग कहते हैं। शिव संहिता में योग को 4 प्रकार से वर्णन किया गया है, जैसे मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। पतंजलि के अनुसार योग को 8 प्रकार से वर्णन किया गया है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंद, समाधि। शिव संहिता के अनुसार मंत्र योग का संबंध मन से है, मनन है इति मन।

0: जो मनन चिंतन करता है वही मन है। मन की चंचलता का निषेध मंत्र के द्वारा करना मंत्र योग में आता है। हठ योग, हठ योग का शाब्दिक अर्थ किसी कार्य को हठ पूर्वक करना। ह शब्द का अर्थ सूर्य तथा ठ शब्द का अर्थ चंद्र से जाना जाता है, अर्थात सूर्य एवं चंद्र की समान अवस्था को हठ योग कहते हैं। लय योग, चित्त का अपने स्वरूप में विलीन होना, अर्थात साधक के चित्त में उठते बैठते हर समय ब्रह्म का ध्यान रहे, इसे लय योग कहते हैं। राजयोग, यह सभी योगों का राजा है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना होता है। इसी क्रम में पातंजलि के अनुसार समाहित चित्त वालों के लिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास, और वैराग्य तथा विक्षिप्त चित्त वालों के लिए क्रिया योग का सहारा लेकर आगे बढ़ने को बताया गया है। योग शास्त्रों में योगासनों की संख्या 84 लाख बताई है, जिसे केवल भगवान शिव ही कर सकते थे, लेकिन उनमें भी प्रमुख 84 हजार माने गए। चूंकि संख्या बहुत अधिक थी, अतः उनमें भी प्रमुख 84 सौ हुए और लास्ट में मात्र 84 प्रमुख आसन रह गए। पातंजलि योग के अनुसार मुख्य 11 आसन हैं, जैसे सिद्धासन, पद्मासन, गौमुखासन, वीरासन, कुक्कुटासन, उत्तानकूर्मासन, धनुरासन, मत्स्येन्द्रासन, पश्चिमोत्तासन, मयूरासन, शवासन। जिस तरीके की शारीरिक, मानसिक प्रदूषण इन चीजों से मनुष्य जूझ रहा है, इस अपनी वर्तमान समय की व्यस्ततम शैली में योग के अलावा और कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि स्वस्थ एवं शांति प्राप्त की जा सके। इस व्यस्ततम शैली में संतोष पाने के लिए लोग योग करते हैं। ऐसा नहीं कि इस योग का महत्व लोग आज समझे हैं, यह अपने वेदों से लिया गया है। जो अपनी प्राचीनतम चिकित्सा आयुर्वेद है, योग चिकित्सा उसका 8वां एक अंग है। 8 चिकित्साओं में योगिक चिकित्सा मुख्य है। योग करने से मनुष्य का तनाव दूर होता है, मन मस्तिष्क को शांति मिलती है, आत्मा की शुद्धि होती है। आज लोग मोटापे से परेशान हैं, उन्हें योग से बहुत फायदे हो रहे हैं। यही कारण है कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। आधुनिक युग में योग का बहुत अधिक महत्व है। इसका कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। आज के समय में योग की ज्यादा आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि मन व शरीर अत्यधिक तनाव, प्रदूषण, भागम भाग के जीवन से रोगग्रस्त हो चला है। आधुनिक व्यथित मन अपने केंद्र से भटक गया है, उसके अंतर्मुखी और बहिर्मुखी होने में संतुलन नहीं रहा। अधिकतर अति बहिर्मुख जीवन जीने में ही आनंद लेते हैं, जिसका परिणाम संबंधों में तनाव, अव्यवस्थित जीवनचर्या सामने आती है। अतः अपने मन की शांति और स्वयं को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए योग बहुत ही अति आवश्यक है। मानव अपने जीवन की श्रेष्ठता के चरम पर अब योग के ही माध्यम से आगे बढ़ सकता है, इसलिए योग के महत्व को समझना होगा। योग सिर्फ शरीर ही नहीं मन को भी लाभ पहुंचाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अक्सर तनाव और अनिद्रा का शिकार हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का समाधान केवल योग में ही छिपा हुआ है। योग का लक्ष्य केवल स्वास्थ्य में सुधार ही नहीं, इससे मोक्ष प्राप्त तक संभव है, जो सभी सांसारिक कष्टों से दूर कर परम ब्रह्म के साथ समरूपता का एहसास कराता है। योग के माध्यम से, जैसा कि ये बताया गया है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया, यह केवल योग के माध्यम से ही संभव है। आजकल मुख्य बीमारियां जैसे मधुमेह, हार्ट डिसीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ये कॉमन चीजें हो गई हैं जो हर 5वें या 6वें मनुष्य में मिल जाती हैं। यदि पर्टिकुलर आसन किए जाएं तो किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। लिहाजा जो हमारा करें योग रहें निरोग का जो सिद्धांत है वह लागू होता है।
1: विविधा के अंतर्गत अभी आप सुन रही थी डॉक्टर सतीश कुमार सिंह की वार्ता, विषय था करें योग रहें निरोग। इसी के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। संध्या के 7:18 होने को हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना?
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सुगंध, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
6: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए KGMU के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
8: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको KGMC ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और DGP महोदय मौके पर हैं, और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है। हर स्थिति में हर संभव

0: मदद करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
1: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला

0: कोकरनार, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
2: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
2: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
4: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
3: कहाँ
2: एडमिशन कराने?
4: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। संध्या के 7:31 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ रेडियो की विशेषता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीयाः। इसका मतलब है ये पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। जब हम माटी की बात करते हैं तो हम केवल मिट्टी की बात नहीं करते, हम उस संपूर्ण गौरवशाली इतिहास और उन अनगिनत संघर्षों और साथ ही साथ हमारी उर्वर संस्कृति की बात भी करते हैं। वही संस्कृति जिसने हमें, हम सबको, आपको, मुझको, सबको पहचान दी है। भारत की जो माटी है वो केवल भूगोल नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि ये अपने आप में एक अनुभव है। इस माटी की खुशबू में एक अजीब सी कशिश है। जब पहली बारिश की बूंदें इस माटी पर

गिरती हैं तो जो सौंधी सौंधी महक उठती है वो मानो हमारे पूर्वजों की यादों को ताजा कर देती हो। ये वही माटी है जिस पर हर त्योहार, हर मौसम के आने पर मेलों की झिलमिलाहट बिखर जाती है। मेले ये केवल बाजार नहीं बल्कि ये हमारी सामूहिक चेतना के मंदिर हैं, जहां व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, सबके दिल एक साथ धड़कते हैं। मेले एक ऐसा रंग है जो हमारे देश को कई रंगों में रंगकर रंगीला कर देते हैं।

जी हाँ साथियों, इन्हीं नीले तमाशों से हमारा देश रंगीला है। हमारे आसपास या कहीं दूर भी जब मेले लगते हैं तो हम सब उनको बड़ी उत्सुकता के साथ देखने चल पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मेले हमारे जीवन में आखिर हैं क्यों, और हैं तो इतने रचे बसे क्यों हैं? अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। जब फसल पकती है, खलिहान भरते हैं, तो किसान के चेहरे पर जो मुस्कान आती है, वही मुस्कान मेलों का आधार बनती है। और इन्हीं मेलों ने हमें सिखाया है सह अस्तित्व, साथ साथ हम सब कैसे रहें घुल मिलकर। लेकिन मेलों का एक दूसरा पहलू भी है, जानते हैं क्या है? वो है आजादी का इतिहास। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में मेलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के जमा होने पर रोक लगा रखी थी, तब हमारे स्वतंत्रता सेनानी इन्हीं मेलों को अपना मंच बनाया करते थे। लोकगीतों की आड़ में कव्वालियों और नृत्यों के बीच देश प्रेम के संदेश दिए जाते थे। मेले वो सुरक्षित स्थान हुआ करते थे जहां गुप्त रूप से बहुत सारी बैठकें होती थीं। मेले वही जगह थे जहां आजादी की अलख जगाई जाती थी। आज जब हम आजाद भारत में मेले देखते हैं, तो हमें उस स्वाधीनता सेनानी के त्याग को भी याद करना चाहिए जिसने मेले की भीड़ में खड़े होकर वंदे मातरम की गूंज को जन जन तक पहुंचाया था। आज के मेले हमारी उस गौरवमय विरासत और भविष्य की आकांक्षाओं का ही एक सेतु हैं। अब जब आजादी की बात चली ही है, तो क्यों ना थोड़ी देर अपनी स्मृतियों के गलियारों में टहलकर आए, चलेंगे ना साथ? तो चलिए हमारे साथ। प्यारे दोस्तों, हमारे मेलों का इतिहास आजादी की गंध से सराबोर है। आपको याद होगा कि लोकनाट्य और कठपुतली के खेल जो मेले की शान हुआ करते हैं, उनमें अक्सर वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं। उन गाथाओं के माध्यम से बच्चों के मन में देश प्रेम के बीज बोए जाते हैं। बहुत से क्रांतिकारी ऐसे हुआ करते थे जो मेलों को अपना सुरक्षित ठिकाना इसीलिए मानते थे क्योंकि वहां की भीड़ में एक दूसरे की पहचान छिप जाया करती थी, और मेले के बहाने एकत्रित होकर भविष्य की रणनीतियां भी बन जाती थीं। वो मेले न केवल मनोरंजन के केंद्र थे, बल्कि भारतीय प्रतिरोध की अग्नि परीक्षा के मैदान थे। आज जब हम किसी मेले में जाते हैं, तो क्या हम उस मिट्टी के नीचे दबी उन पदचाप को महसूस कर पाते हैं या नहीं? ये जवाब तो आपके पास ही होगा, लेकिन कर जरूर सकते हैं। उन शहीदों की गूंज आज भी मेलों के झूलों की सरसराहट में कहीं खोई हुई है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आज की आजाद सांसें उन्हीं मेलों के बीच से उपजी उस क्रांति की देन है। मेले हमें सिखाते हैं कि देश के प्रति प्रेम केवल भाषणों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की उत्सव धर्मिता में भी झलकना चाहिए। और ये बात तो हम भूल ही नहीं सकते कि हमारा देश वही देश है जो वीर जवानों का है और जहां नित नित मेले लगते हैं।

साथियों, मेलों से याद आया कि इस वक्त भी हमारे देश में जो कश्मीर है वहाँ क्षीर भवानी का मेला लगा हुआ है। तो चलिए, आप भी चाहें तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चलिए कश्मीर की उन हसीन वादियों में जहाँ तुलमुला गांव है और इसी गांव में स्थित है माँ क्षीर भवानी का मंदिर। जब हम अपनी माटी की बात करते हैं तो क्षीर भवानी का उल्लेख करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये जगह भारत के उस गंगा जमुनी स्वरूप का प्रतीक है जो आज भी अडिग है। क्षीर भवानी का मेला केवल कश्मीरी पंडितों का त्यौहार नहीं है बल्कि ये कश्मीर की पूरी आवाम का त्यौहार है। आप देखेंगे कि उस जगह पर रहने वाला किसी भी धर्म का कोई भी भाई हो, वो अपने हिंदू भाई बहनों का स्वागत करते हैं, उनके लिए दूध और फूल लेकर आते हैं। वहां की दूधिया झील का जब रंग बदलता है तो उसे देखने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं और उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। क्या कहता है वो दृश्य हमसे जिसे अभी आप अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं? ये दृश्य ये संदेश देता है कि हमारी माटी हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। जिस तरह क्षीर भवानी की माटी ने सदियों तक सांप्रदायिक सौहार्द को अपने सीने में संजोकर रखा है, वही हमें सिखाती है कि हमारे देश की असली ताकत हमारी विविधता में छुपी एकता है। वो मेला हमें याद दिलाता है कि भले ही पहाड़ कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, लेकिन अगर माटी के प्रति निष्ठा हो तो कोई भी दूरियां हम सबको अलग नहीं कर सकती।

साथियों, आज हम सब डिजिटल युग में जी रहे हैं। दुनिया एक स्क्रीन के भीतर सिमट गई है, लेकिन क्या ऑनलाइन शॉपिंग की चमक धमक हमारे देश के उन मेलों की जगह ले सकती है जहां मिट्टी के दिए, बांस की टोकरियां और हाथ से बुने हुए स्वेटर मिलते हैं? ले सकती है क्या? बिल्कुल नहीं ना। आज के मेले हमारे कारीगरों, हमारे छोटे उद्यमियों और हमारे वोकल फॉर लोकल अभियान का सबसे बड़ा केंद्र है। जब आप मेले में जाकर एक स्थानीय कुम्हार से माटी का पात्र खरीदते हैं, तो आप केवल एक वस्तु नहीं खरीदते, आप उस कारीगर के हुनर को सम्मान देते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा। साथियों, किसी भी अभियान का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपनी जड़ों की ओर लौटना। आधुनिकता का स्वागत हमें करना चाहिए, लेकिन अपनी माटी की खुशबू को खोना नहीं चाहिए। हमारे मेले ही वो स्थान है जहां हमारी अगली पीढ़ी अपनी परंपराओं से रूबरू होती है। यहां दादी की कहानियां हैं, यहां लोक कला है और यहां भारत की सच्ची आत्मा बसी है। मेले सिर्फ चहल पहल का नाम नहीं है, ये हमारे समाज का एक अनूठा सोशल मीडिया है, आप चाहें तो ऐसा कह सकते हैं इसे। लेकिन ये वो सोशल मीडिया है जो डिजिटल नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं से चलता है। पुराने समय में जब संचार के साधन बहुत सीमित हुआ करते थे, तब मेले ही एकमात्र माध्यम थे जहां रिश्ते तय होते थे, जहां दूर बसे रिश्तेदार साल भर बाद मिलते थे और जहां गांव की पंचायतें सामाजिक सरोकारों पर चर्चा किया करती थीं। सोचिए, एक मेला कितने घरों को जोड़ता है। दो अजनबियों की मुलाकात हो जाती है, कभी एक साझा दुकान पर बहस होने लगती है और मिठाइयों की मिठास के साथ घुलती कड़वाहट, ये सब हमारी मिट्टी का ही तो जादू है। मेले हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के कितने करीब हैं। जब हम मेले में साथ बैठकर भोजन करते हैं तो जाति, धर्म, वर्ग के सारे बंधन गौण हो जाते हैं, केवल एक ही पहचान रह जाती है कि हम सब भारतीय हैं। ये मेलों की

साथियों, ये मेले हमारी संस्कृति का जीवित दस्तावेज हैं। आइए इन्हें सहेजें, इनका सम्मान करें और गर्व से कहें, मेरी माटी मेरा देश। इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं शामी गजल, ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहली गजल हमने ली है फिल्म गजल से। इस गजल को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत में बांधा है मदन मोहन ने।

अभी आप सुन रहे थे गजल फिल्म की गजल, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, बोल साहिर लुधियानवी के थे और संगीत मदन मोहन का। लीजिए अब समाप्त कीजिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गज़ल, जिसे हमने लिया है फिल्म ताजमहल से। गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने और मौसिकी रोशन की है।

ताजमहल फिल्म से ये गजल अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में काजल फिल्म की ये गजल, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सवारा है रवि ने।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शामी गजल। लीजिए अब सुनिए अर्थ फिल्म की गजल, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने और लिखा है कैफी आजमी ने।

ये गज़ल आप सुन रहे थे अर्थ फिल्म से। अगली जो गज़ल हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म साथ साथ से। आवाज़ें हैं जगजीत सिंह और चित्रा की, बोल जावेद अख्तर के हैं और धुन बनाई है कुलदीप सिंह ने।

इस गज़ल को हमने लिया था फिल्म साथ साथ से। आवाज़ें थीं जगजीत सिंह और चित्रा की, बोल जावेद अख्तर के थे और संगीत कुलदीप सिंह का था। आइए आप सुनते हैं बाजार फिल्म की ये गज़ल, जिसे गाया है लता मंगेशकर और तलत अजीज़ ने। मखदूम मोइनुद्दीन के बोल हैं और संगीत खयाम का है।

अभी आप सुन रहे थे मर्यादा फिल्म से ये गजल, जिसे गाया था मुकेश ने, बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल अनु मलिक के संगीत निर्देशन में। आवाज लता मंगेशकर की है, फिल्म का नाम है गंगा जमुना सरस्वती।

गंगा जमुना सरस्वती। जी हाँ, इस फिल्म के गीत के बाद आइए अब सुनते हैं आंखें फिल्म का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और कुमार शानू की। इंदुवर के बोल हैं और धुन बनाई है बप्पी लहरी ने।

अभी आप सुन रहे थे आँखें फिल्म से ये गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और कुमार शानू ने। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में गुलशन बावरा के बोल। धुन बनाई है आदि बर्मन ने, फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म के गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के केजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं,

0: और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ वेम्बू जी ने क्या काम किया है शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था, करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे, चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे देखने के लिए भाई नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
1: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
3: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
4: वित्त मंत्री डॉक्टर ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुक उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय

0: सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में सीआईएसएफ के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और विपुल एम पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाईं। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90

0: अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर 94.68 रुपये पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Centre in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add 4 more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टैमर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाकई एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़ कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे न हो।
3: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसकी कड़ी कार्रवाई करें।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के और नौजवानों को खोया है,
5: उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे

0: इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलुकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और यह एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गई। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए यह बात कही।
3: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
2: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबरान पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबरान पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबरान असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नजरियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमुई दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़्म से वाकिफ कराया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने उलान बाटा में आज मंगोलिया के अपने हम मनसब बदसित्सक बतमुंक से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि इस तबादले ख्याल से भारत और मंगोलिया के दरमियान कलीदी साझेदारी की गर्मजोशी, कुव्वत और मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। दोनों रहनुमाओं ने तरक्याती प्रोजेक्टों, सलाहियत साजी, सकाफत, तालीम, सिक्योरिटी और कसीर मुल्की फोरमों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान तरफेन ने कानकनी माहौलियात के लिए साजगार तवानाई और जरई प्रोसेसिंग के शोबों में दस्तियाब मौकों के बारे में भी बातचीत की। बीजेपी की क्यादत वाली मगरबी बंगाल सरकार ने आज 2026-27 के लिए अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में समाजी फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की तरक्की और रोजगार पैदा करने पर खास जोर दिया गया है। बजट में ख्वातीन पर मरकूज कई इकदाम का ऐलान भी किया गया। 6,070 करोड़ रुपए के खसारे वाला बजट पेश करते हुए वजीर खजाना स्वपन दास गुप्ता ने इसे एक तरक्की याफ्ता बंगाल बनाने के

0: अर्जेंटीना और ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय मेयारी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। मैच अमेरिका के अर्लिंगटन में होगा। रात देर गए 2:30 बजे फिलाडेल्फिया में फ्रांस का मुकाबला इराक से होगा। इससे कबल आज सुबह मिस्र ने न्यूजीलैंड को 1-3 गोल से हराकर पहली मर्तबा आलमी कप का कोई मैच जीता और इस तरह उसे ग्रुप जी में पहला मकाम हासिल हो गया। आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरान पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टेमर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। रोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, सम्मान और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। जब युवाओं को अवसर मिलते हैं तो न केवल उनका भविष्य संवरता है बल्कि देश की प्रगति को भी नई गति मिलती है। इसी सोच के साथ सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और युवाओं को औपचारिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले वर्ष प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। पिछले सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। ये योजना विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। क्या है ये योजना, इसे युवाओं, कर्मचारियों और नियोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इन्हीं सब महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में। हमारा विषय है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा और क्षेत्रीय आयुक्त प्रणित जोशी। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे स्टूडियो नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है उसके बाद 2331-0481 या 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं और ट्विटर हैंडल है @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए आपके जो भी सवाल हैं और शंकाएं हैं पूछ सकते हैं। तो आगाज करते हैं कार्यक्रम का। सबसे पहले पूर्णेंदु जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक ऐसी योजना है जो कि यहाँ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, वर्कफोर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए, सोशल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को इनकरेज करने के लिए एक सरकार ने एक इंसेंटिव स्कीम जारी की है। ये इंसेंटिव स्कीम इनफैक्ट 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर अभी अगले 2 साल के लिए रहेगी और इस इंसेंटिव स्कीम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों को इंसेंटिव दे रही है भारत सरकार, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जो भी जनरेट हो रहा है उसको एक बढ़ावा मिले और जो एम्प्लॉयज किसी भी एम्प्लॉयर के साथ जुड़ रहे हैं वो वहां पे कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट बनी रहे।
0: जी प्रणित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ईपीएफओ बहुत मेजर रोल निभा रहा है, क्या है, अपने श्रोताओं को इस बारे में बताएं।
2: हाँ, सो ये स्कीम जो है भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ईपीएफओ को सौंपा है, तो ईपीएफओ इंडिया एंड वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट

0: सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे यहाँ जो फॉर्मल एम्प्लॉयज है लगभग 8 करोड़ फॉर्मल एम्प्लॉयज हमारे यहाँ कवर्ड है, तो ये स्कीम में जो भी बेनिफिट्स हैं वो ईपीएफओ के थ्रू हम देने की प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कोई द बेस्ट पार्ट इज इसमें कोई एडिशनल कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट नहीं है आइदर फॉर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, डायरेक्टली ईपीएफओ एनरोलमेंट से ही सारे बेनिफिट्स हम लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम कैलकुलेट करके इनको दी जाएगी।
1: ये तो एक तरह से मध्यस्थता का काम कर रहा है ईपीएफओ नियोक्ता और जो कर्मचारी के बीच में। हमारे पहले श्रोता जुड़ गए हैं रायबरेली उत्तर प्रदेश से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, सवाल पूछे अपना।
2: हाँ, विकसित भारत के अंतर प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला और किस तरह का रोजगार मिला?
0: हाँ रमाशंकर जी, ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, तो अभी तक लगभग 70 लाख युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय जो पहली बार फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं, लगभग 70 लाख से ज्यादा लोग हमसे जुड़े हैं। इसमें लगभग 13.29 लाख तक का बेनिफिट अभी हमने उनको, इन्होंने 6 महीने कंप्लीट कर चुके हैं, तो इनका पहला किस्त का जो बेनिफिट है हमने उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए।
1: जी पूर्णेंदु जी, आपने इंसेंटिव्स की बात की थी, तो इंसेंटिव्स जो, अगर मैं सबसे पहले कर्मचारी जो पहली बार जो नौकरी पाने वाले हैं तो उनको क्या मिलता है, किस तरह से मिलता है ये बताएं।
3: कर्मचारियों के लिए जो यहाँ पे बेनिफिट मिलती है इस स्कीम में वो है जो पहले 6 महीने तक अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने के बाद वहाँ रह जाता है तो उनका जो एवरेज वेज होता है उसका आधा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 15,000 रुपये, तो ये पूरा बेनिफिट हो गया। पहले 6 महीने में उनको 7,500 रुपये तक मिलते हैं और अगले 6 महीने तक अगर वो एक हमारे यहाँ पे वो लिटरेसी कोर्स उनको करना पड़ता है, 6 महीने के बाद अगर उन्होंने वो कंप्लीट कर लिया और लगातार वहीं एम्प्लॉयड रह गए तो उनको 12 महीने के बाद 15,000 रुपये तक की राशि दी जाती है।
1: तो 6 महीने के बाद और फिर 6 महीने
3: के दो बार दिया जाता
1: है। आगे भी चर्चा करते हैं, पहले अपने श्रोता का सवाल पूछ लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला से हैं राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, तो मेरा एक प्रश्न ये है कि जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो इसमें हमें क्या क्या प्रावधान रखना पड़ता है और इसके लिए हमें फॉर्म किस तरह से भरना पड़ता है, ये मेरा प्रश्न है।
3: राकेश जी, आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना पड़ता, आपको केवल ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ता है। ईपीएफओ के साथ जुड़ने के लिए जो ईपीएफओ में कवरेज के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंपनी जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, जो भी संस्थान हो जहाँ आप काम कर रहे हैं वो अगर ईपीएफ में कवर्ड हैं, और जो बिल्कुल नए लोग अगर आ रहे हैं उस कंपनी में जो 1 अगस्त 2025 के पहले कहीं भी हमारे ईपीएफओ से जुड़े हुए नहीं थे तो वैसे लोगों के लिए एक इंसेंटिव है, और इसलिए इसमें कोई अलग से आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ईपीएफ में आप किसी भी एम्प्लॉई का कंप्लायंस हो रहा है तो वैसे लोगों को ऑटोमेटिकली इसका बेनिफिट मिल जाता है।
1: जी अगर हम नियोक्ता की बात करें तो उनको इस योजना से क्या लाभ मिलेगा और जो इसमें उनको भाग लेने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर जैसे अगर कोई कंपनी है अगर वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, उसने ईपीएफओ में रजिस्टर किया है या स्टार्टअप है नया, तो उन सबके लिए क्या प्रावधान है?
3: कंपनी के लिए 2-3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, अगर वो ईपीएफओ में कवर्ड नहीं है तो पहला तो उनका कवरेज जरूरत होगी यहाँ ईपीएफओ में, साथ ही उनके जितने भी एम्प्लॉई हैं जो नए एम्प्लॉई आके ज्वाइन कर रहे हैं उनके बेसिस पे, और जो पुराने एम्प्लॉई जो भी हैं जो कहीं और से आके उनके यहाँ जुड़ रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट टाइमर एंड रीज्वाइनिंग, तो दोनों के नंबर को जोड़ा जाता है। और जो इंसेंटिव है, अगर 10,000 रुपये तक की सैलरी है एम्प्लॉई की तो उसमें 1,000 रुपये, अगर 20,000 रुपये तक की सैलरी है 10 से 20,000 तो 2,000 रुपये, और अगर 20,000 से लेकर और 1,00,000 रुपये तक की अगर सैलरी है तो 3,000 रुपये का इंसेंटिव एम्प्लॉयर को मिलता है, और ये एम्प्लॉयर को प्रत्येक महीने जैसे मिलता जाएगा। अभी पहले 6 महीने किसी का सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट हुआ, फिर अगले महीने भी किसी न किसी का 6 महीने होगा तो वैसे उनको बेनिफिट मिलता रहेगा।
1: ये भी डीबीटी के थ्रू ही,
3: ये सारे बेनिफिट एम्प्लॉयर को डीबीटी के थ्रू मिलेगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो केवल एक ही होती है, एक ईपीएफ में कवर्ड हो, दूसरा उनका जो पैन डिटेल्स है वो हम लेते हैं उनके, क्योंकि हम पैन से जो लिंक्ड उनका बैंक अकाउंट होते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होती है, डीबीटी एम्प्लॉयज के लिए होती है।
1: जी हरिद्वार से जुड़े हैं रवि जी।
5: हाँ जी नमस्कार मैम जी।
1: नमस्कार, स्वागत।

0: है कार्यक्रम में।
1: हाँ जी, थैंक यू। और महानुभव विशेषज्ञ को भी नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, ये प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना है सर, इसके लिए जो ये एक युवा है वो मतलब क्या क्वालिफिकेशन होकर मतलब इस योजना का हिस्सा बन सकता है, मतलब इस योजना से लाभ उठा सकते हैं, इसमें एक युवा की क्या मतलब क्वालिफिकेशन होती है, क्या
0: पात्रता क्या होनी चाहिए, रहनी चाहिए, आप बताएं।
2: रवि जी, इसमें जैसे कि पूर्णेंदु जी भी पहले बताया कि इसमें कोई एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, आपको बस ईपीएफओ के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो अगर पहली बार आपकी संस्था में आप ज्वाइन कर रहे हैं, पहली नौकरी में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई युवा अगर कोई ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनको फेशियल ऑथेंटिकेशन के माध्यम से उमंग ऐप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस ऐप में उनको एक नंबर दिया जाएगा, उसको हम लोग यूएएन कहते हैं। और उसके बाद 6 महीने अगर उसी संस्था के साथ आप जुड़े हैं और आपका जो जो ग्रॉस वेजेस है आपके, आपका जो सैलरी है वो 1 लाख से कम होना चाहिए, उनके लिए एक स्कीम है, तो 6 महीने के बाद आपको पहला किस्त 7,500 तक दिया जाएगा और उसके बाद एडिशनल 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा।
0: जब हम एम्प्लॉयर्स की बात आगे कंटिन्यू रखते हैं, जैसे मैंने पूछा कोई नया अगर स्टार्टअप आया है और 50 से कम अगर उसके एम्प्लॉयज हैं या 50 से ज्यादा हैं, तो उन सब के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं अलग अलग कि मिनिमम आपके पास अगर आप आपको इतने रखने होंगे, ईपीएफओ में रजिस्टर होना होगा, तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं।
3: जी, एक स्कीम की सबसे प्राइमरी कंडीशंस में से एक ये है कि आपने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट उस संस्थान ने कितना जनरेट किया है। तो उसने अगर किसी के पास 50 से कम एम्प्लॉई हैं, अगर उन्होंने मिनिमम 2 भी एम्प्लॉई को जनरेट कर दिया, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अगर नया आ गया, और अगर 50 से ज़्यादा उस संस्थान के सदस्य हैं, तो वैसे केसेस में 5 उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, तभी वो इसके लिए पात्रता के भागी होंगे। लेकिन साथ में एक और चीज़ बता दूँ आपको कि जहाँ पे एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर का जो टोटल हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारे ईसीआर पे, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न होता है। तो न केवल ये कितना उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा, 2 आदमी होंगे या 5 आदमी होंगे, बल्कि इन लोगों के लिए कंप्लायंस भी रिक्वायर्ड होगा 6 महीने के लिए।
0: हाँ,
3: तो लगातार अगर कंप्लायंस आएगी 6 महीने, तभी ईपीएफओ को पता चलेगा कि ये एम्प्लॉय इनके साथ जुड़े हुए थे, उनका वेज कितना था और कितने रुपए के इंसेंटिव के हकदार हैं। जो थ्रेशोल्ड का एक और दूसरा भी कॉम्पोनेंट है हमारा, कि जो नेट एम्प्लॉयमेंट है कितना जनरेट हुआ, उसका हम लोगों ने एक रखा हुआ है, जो जो एक पर्टिकुलर पीरियड हमने माना हुआ है, राइट। एक पीरियड है कि अगर अगस्त के पहले, अगस्त 2025 के पहले अगर कोई भी इस संस्थान हमारे साथ जुड़ी हुई थी, तो उसको हम तभी मानते हैं, उसके पिछले 12 महीने का एवरेज देखते हैं कि कितने लोग थे, और वहां से फिर उसका वो एवरेज हो गया, बेसलाइन जिसे हम कहते हैं, तो बेसलाइन से कितना बढ़ रहा है। अगर अगस्त 2025 के बाद कोई भी संस्थान है, तो उसका बेसलाइन होगा हमारा वो 20 रहेगा मिनिमम, वहां पे एवरेज हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, तो उस बेसलाइन के बाद फिर हम उसको आगे काउंट करते हैं।
0: छोटी छोटी चीजें देखी जाएंगी और तभी इंसेंटिव के आप पात्र बनेंगे। बिहार से जुड़े हैं हिमांशु जी। हिमांशु जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि अपने जो आपका रेडियो है सेट है, उसकी आवाज कम कर दें।
4: मैडम कर दिया मैंने।
0: जी जी,
4: कर दिया, कर दिया।
0: सवाल
4: मैडम, मेरा ये सवाल था कि क्या मैं अभी भी एम्प्लॉयमेंट में हूँ एनआईसी मुजफ्फरपुर में, ठीक है
0: जी,
4: लेकिन थर्ड पार्टी जो मुझे पेमेंट कर रही है, तो ये जो एम्प्लॉयमेंट के, ये मेरा जो है ईपीएफ नहीं कट रहा है मैम, तो क्या हम लोग, लेकिन पहले से जो हम कंपनी हमारी थी उनके द्वारा मेरा जो ईपीएफ कटा हुआ है, तो क्या हम लोग इसमें इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है?
0: जी पुनेंद्र जी,
3: हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज है कि आपको बिल्कुल नए एम्प्लॉय होना पड़ेगा। आप चूंकि पहले से ईपीएफ से जुड़े हुए हैं, तो जो एम्प्लॉयज को जो बेनिफिट मिलती है उसमें आप हकदार नहीं होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है, अगर आप कहीं भी और दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं, तो उसको एज रीज्वाइनी हम लोग आपके जो भी यहाँ पे ज्वाइन करने के हिसाब से एम्प्लॉयर को इंसेंटिव मिलेगा।
0: महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़े हैं गुरुनाथ जी। हेलो।
5: हाँ जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार,
5: मैं गुरुनाथ बोल रहा हूँ, ठाणे महाराष्ट्र।
0: जी जी,
5: हाँ मैम, मेरा

0: क्वेश्चन है, जैसे ईपीएफओ में जो नई कंपनियां होती है, जैसे ज्वाइंट होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज का पैसा तो कटता है, तो कभी कभी ये देखा गया है कि सही तरीके से पैसा वहाँ पे जमा नहीं हो पाया है, फ्रॉड कभी कभी फ्रॉड भी देखा जाता है, गड़बड़ी देखी जाती है उसमें, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। और सही मतलब जो पैसा सैलरी से कट जाता है एम्प्लॉयज का इस कंपनी से, तो वो जमा हुआ है कि नहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कैसे चेक करें? थैंक यू
1: जी प्रणय जी।
2: गुरुनाथ जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो एम्प्लॉयज से जो एम्प्लॉयर पैसे काटता है पीएफ जमा करने के लिए, अगर वो एम्प्लॉयर पीएफ जमा नहीं करता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, एंड उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस

0: उस एम्प्लॉयर को एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर उनको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी इसमें ये सवाल है कि इसमें आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पासबुक है, आप अपने पासबुक में आप चेक कर सकते हैं हर महीने की जो आपका अमाउंट कट रहा है वो सही से जमा हो रहा है नहीं है। एंड उसमें पासबुक में आपको ये भी दिखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना जमा हुआ है और टोटल कितना अमाउंट है। तो आपके लॉगिन या फिर आप उमंग ऐप से भी आपका पासबुक आप देख सकते हैं इसमें।
1: जी, बिहार के सासाराम से जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार। मेरा ये सवाल था, सभी विशेषज्ञों को मेरा नमस्कार, कि जैसे कि हम लोग जो अभी 2025 से जो अभी लागू हुआ है 1 अगस्त, उससे पहले जितने भी जैसे कि अलग अलग कंपनी में जो लोग जॉब करते हैं या बीच में कहीं छूट जाता है, तो कैसे वो मालूम चलेगा कि उनका पीएफ जो जो कटता है या पीएफ का जो इतना संभाग उनमें रहता है क्रेडिट, तो कैसे मालूम चलेगा कि वो कट रहा है कहाँ कैसे? जी,
3: अमित जी, अमित जी नमस्कार। आपको एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया होगा, आपने जहाँ कहीं भी काम किया होगा, तो अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू आप एम्प्लॉई पोर्टल पे जाके ईपीएफओ के आप लॉगिन कर लें। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो जो भी आपका आधार लिंक्ड फोन नंबर है उसके उसके थ्रू ओटीपी से आप रिसेट कर सकते हैं। और जितने जगह पे भी आपने काम किया होगा जो यूएएन से लिंक्ड होगा, वहां पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे आपके अपने पोर्टल पे ही। आपके पासबुक में भी वो दिखने चाहिए, और जहां जहां से भी आपने काम किया है, अगर आपने ट्रांसफर नहीं करवाया है तो आप उसको एक जगह पे ट्रांसफर करवा लें, ताकि आपके लिए बाद में सुविधा होगी।
1: जी हाँ, जैसे अब कई लोगों की शंकाएं हैं, कई जो होते हैं जो कर्मचारी हैं उनको ईपीएफ खाते, यूएएन नंबर या अन्य सुविधाएं उनके बारे में जानकारी नहीं होती, तो उस लिहाज से आप क्या बताना चाहेंगे कि किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप कोई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या कदम उठाने हैं?
3: अभी
0: सो जब भी कोई अभी जो हमने अगस्त 2025 से एक प्रावधान किया है, पहले ये होता था कि जहां पे जिस संस्था में कोई ज्वाइन करते हैं कोई एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर खुद वो उनका यूएन जनरेट करते थे। तो अभी हमने वो हक सिटीजन को ही दिया है, एम्प्लॉय को ही दिया है, जो खुद अपने उमंग ऐप से जो आधार ऑथेंटिकेशन करके वो खुद अपना यूएन जनरेट करेंगे और फिर वो एम्प्लॉयर को देंगे। तो उससे जो उसको बेसिक तो उनके हाथ में है कि उनका ईपीएफओ का अकाउंट बना नहीं है, बना है या नहीं है, अभी एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है। तो उसके बाद उनको ये देखना है कि उनका हर महीने पासबुक उनको चेक करना है कि हमेशा वो हर महीने उनका एवरीमंथ डिपॉजिट हो रहा है नहीं हो रहा है।
1: जी, ओडिशा से जुड़े हैं देशदीप दास जी। दास जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो दास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है?
4: जी नमस्ते।
1: नमस्ते
4: शर्मा जी और अरोरा जी, नमस्ते।
1: जी
3: नमस्ते
4: जी। मेरा सवाल है, क्या नियोक्ता को अलग से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक है?
3: नियोक्ता को अलग से मैं नहीं कहूंगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, उनके पोर्टल पे जाकर और आपको केवल नियोक्ता को अपना पैन देना होता है, और जो एक बैंक अकाउंट उनका देना होता है जो पैन लिंक्ड होता है, उसी को हम इनफैक्ट इस स्कीम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन मान सकते हैं। सेपरेट रजिस्ट्रेशन बस उसी तरह का होता है। उसके बाद नियोक्ता का जो भी बेनिफिट होता है, बिकॉज पैन के साथ हम इसको लिंक करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक ही पैन के साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम उन सबों को पैन एग्रीगेट करके जो बेनिफिट देते हैं वो पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट में देते हैं। तो बेसिकली आपको पैन टैन का डिटेल्स होगा, नियोक्ता का जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं वहां पे, और साथ में बैंक अकाउंट नंबर जो कि पैन के साथ लिंक्ड हो, वो एम्प्लॉयर पोर्टल पे ही देना होता है। उसके लिए आपको और कहीं अलग रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती है।
1: और इन्होंने दस्तावेज के बारे में पूछा था,
3: और कोई दस्तावेज नहीं चाहिए,
1: जरूरत नहीं है, बार बार बता रहे हैं आपको इस कार्यक्रम के जरिए। ये जो योजना है, अगर आप फॉर्मल नौकरी के हिसाब से, रोजगार सृजन के हिसाब से बात करें, तो बहुत बड़ी 99,000 करोड़ रुपए से इसका आउटले है। मेजर अगर बात करें जो असंगठित क्षेत्र से जो आते हैं लोग, उनको संगठित क्षेत्र में लेकर जाना, तो उनके लिए योजना किस तरह से आप लाभकारी होते देखते हैं?
3: इसमें दो तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहला, जो एम्प्लॉयज पहली बात की 6 महीने तक वो रहेंगे एक जगह, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि वहां रुकें। एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है कि कोशिश

0: करें कि उनके एम्प्लॉई वहीं पे रह जाएं। एम्प्लॉई को एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आपको पता होगा कि जैसे नए एम्प्लॉई अगर कोई भी ज्वाइन करते हैं तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहां एक ऐसी स्कीम है जहां पे एम्प्लॉयर को भी फायदा हो रहा है, एम्प्लॉई को भी फायदा हो रहा है। जनरली अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनरली एक कॉन्सेप्ट था इंडिया में कि अगर एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉई के अगेंस्ट है, एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है। यहां इन दोनों को साथ में लेकर चलने की बात हो रही है।
1: और ये होता था कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, भाई आप हमें नौकरी पे रखोगे तभी एक्सपीरियंस मिलेगा,
0: और जब तक नौकरी में आएंगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस होगा नहीं। तो एक बहुत अच्छी स्कीम है जहां उनको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी सरकार प्रोत्साहित कर रही है और एम्प्लॉयर को भी प्रोत्साहित कर रही है कि आप ऐसे लोगों को रखेंगे और सस्टेन करें वहां 6 महीने 1 साल के लिए, तो आपको भी इंसेंटिव मिलेगा।
1: जी, दिल्ली से जुड़े हैं धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर नमस्कार।
0: नमस्कार
2: सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो कुछ जो एम्प्लॉयर होते हैं जो उनकी एज लिमिट निकल जाती है, तो क्या सरकार को चाहिए नहीं कि उनकी एज लिमिट को थोड़ा बढ़ा के रखना चाहिए, जिसको जरूरत है वो ही इसमें भी आ सके, और इसमें जो एम्प्लॉयर है वो कितनी इसकी सैलरी इसको डिसाइड कर सकता है।
3: तो इसमें दो पार्ट आपने पूछा है, एक तो एज का पूछा है, तो स्कीम तो जनरली युवा एम्प्लॉयज को प्रोत्साहन मिलता है, बट ऐसा कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। तो अगर कोई 40 साल में भी पहली बार संगठित क्षेत्र में नौकरी पा रहा है तो वो इस बेनिफिट के लिए एलिजिबिलिटी है। एंड दूसरा
1: सैलरी का पूछा है।
3: सैलरी, हाँ, तो इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था कि जो हाई अर्निंग हाई इनकम ग्रुप है तो उनको ये बेनिफिट ना दिया जाए। तो 1 लाख से जो नीचे उनका जिसका ग्रॉस सैलरी है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है।
1: अक्सर हम देखते हैं कि जैसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती, तो इस योजना के जरिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज को किस तरह मजबूत किया जा रहा है?
3: तो इसमें जो सामाजिक सुरक्षा ईपीएफओ हम लोग 3 स्कीम चलाते हैं, तो जो भी ये पीएमवीबीआरवे के तहत हमसे जुड़ते हैं तो उनको ये तीनों स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं। तो इनमें से प्रोविडेंट फंड है जो कि आपके लाइफ टाइम अर्निंग्स को वेरी गुड इंटरेस्ट रेट के साथ हम लोग रिटर्न करते हैं, और इसमें बहुत सारे पार्शल विड्रॉल्स के प्रावधान है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पेंशन एक बहुत बड़ा चीज है इसमें, ना केवल उनका सुपर एनुएशन पेंशन बल्कि उनके डेथ केस, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी उनको फैमिली को भी पेंशन मिलता है, एंड इंश्योरेंस का भी एक कॉम्पोनेंट है, लाइफ इंश्योरेंस का।
1: जी पुणेंदु जी, जैसे अक्सर शायद किसी ना किसी के मन में ये प्रश्न होगा कि जो ये योजना है रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, लेकिन ऐसे में यदि कोई जो नियोक्ता योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद कर्मचारी को नौकरी से हटा देता है या उसे लंबे समय तक कार्य में नहीं बना के रखता है, तो क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कोई प्रावधान या निगरानी व्यवस्था है?
0: इसमें एक सिस्टम का ही इनबिल्ट मैकेनिज्म है। जैसे ही अगर कहीं भी एम्प्लॉयमेंट कम होती है जो बेसलाइन से, या थ्रेशोल्ड अगर उसका डाउन होता है, तो एम्प्लॉई तो चलो 6 महीने के बाद अगर वो नहीं रहते हैं वहां एम्प्लॉयमेंट में तो उनको नहीं मिलेगा बेनिफिट, लेकिन साथ ही एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट कम हो जाती है। तो एम्प्लॉयर के लिए काइंड ऑफ डिसइंसेंटिव है कि अगर लोगों को निकाल रहे हैं, हटा रहे हैं, अगर वहां पर रिटेन नहीं कर रहे हैं, तो राधर एम्प्लॉयर को अभी ज्यादा इंसेंटिव इसमें है कि लोगों को रखें, रिटेन करें और उनको ट्रेन करें। तो केवल रिटेन करना ही नहीं होगा, जितने दिन लोग रहेंगे उनके लिए एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एम्प्लॉई के लिए भी फायदा, एम्प्लॉयर के लिए भी फायदा।
1: जी, विन विन सिचुएशन है दोनों।
0: विन-विन है जी।
1: बिहार से जुड़े हैं मोहन पासवान जी।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार,
4: मैं बसपुर दरभंगा बिहार से बोल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कंपनियां लोगों के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाई है सर, नए स्तर से। दूसरा है सर,
0: जी पूछा
1: जी मोहन जी,
4: सर भारतीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है 2017 तक, इसके लिए कौन से सूत्र तैयार किए गए हैं सर, एवं इसमें युवाओं के रोजगार के लिए क्या क्या योजना बनाए गए हैं सर?
1: जनरलाइज सवाल पूछाना ने
0: एक जनरलाइज सवाल है। बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, उनमें से एक योजना ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है जो 2047 के विजन को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों को बेनिफिट देते हुए, इंसेंटिव देते हुए ये कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार को जो सृजित कर रहे हैं

0: उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, वर्कर जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए, तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ओवरऑल इंसेंटिव करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये एक बहुत अच्छी योजना है।
1: जी अक्सर मैं एक सवाल जो रहता है जहन में एमएसएमई क्षेत्र को लेकर, जो छोटे छोटे जो रोजगार सृजित करते हैं, तो देश के जो एमएसएमई क्षेत्र को रोजगार का जो प्रमुख हम स्रोत मानते भी हैं, तो इस योजना को एमएसएमई क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है इस योजना से?
2: तो इसमें एमएसएमई के ऊपर जो जो इसके ऊपर प्रोविजंस है, तो नॉर्मली ईपीएफओ जो लॉ है वो केवल एस्टैब्लिशमेंट्स विद एटलीस्ट 20 एम्प्लॉयज जो है उनके लिए मैंडेटरी है, बट आज के डेट में हमारे पास जो डेटा है उसमें बहुत सारे ऐसे एमएसएमईज हमसे जुड़े हुए हैं जिसका स्ट्रेंथ 20 से भी कम है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि उनके लिए उनके छोटा साइज को ध्यान में रखते हुए, उनके कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको केवल दो एम्प्लॉयज, एडिशनल एम्प्लॉयज जनरेट करने का उनको कंडीशन रखा गया है, तो दो साल के पीरियड में उनको एटलीस्ट दो नए एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है और उनको सस्टेन करना है, तो सारे एमएसएमएस इसमें बहुत बेनिफिट मिलने की आवश्यकता है।
1: तो विनिर्माण क्षेत्र को भी इस जो योजना से बहुत लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, तो वो किस प्रकार मिलेगा?
2: तो विनिर्माण क्षेत्र में एम्प्लॉयर जो है उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है इसमें, सो जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये स्कीम चलता है, तो बाकी संस्थाओं को जो दो साल तक जो बेनिफिट मिलता है हर एक महीने हर एक नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग में है उनको चार साल तक इसके स्कीम के बेनिफिट्स मिलते हैं।
1: यदि कोई जो युवा है पूर्णेंदु जी, पहली बार नौकरी शुरू कर रहा है, तो उसे ईपीएफओ से जुड़ी कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा?
0: जो भी नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहली बात तो उनका एक फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू उमंग ऐप पे जब भी वो यूएएन जनरेट होता है तो वहां पे उनकी हम आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो वो बहुत जरूरी है। जो पार्ट ए का जो बेनिफिट मिल रहा है इस स्कीम में कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनका होना पड़ेगा। सेकंड, उनका एक डीबीटी इनेबल्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, सो आधार के साथ लिंक होता है, लेकिन आपको बैंक में साथ ही साथ अपना डीबीटी के लिए भी इनेबल करवाना पड़ता है, तो ये दोनों चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे फिर जैसे ही ईपीएफओ में अगर आप जुड़ते हैं ऑटोमेटिकली आप 6 महीने तक अगर आ रहे हैं यहां हमारे साथ सस्टेन कर गए एक एम्प्लॉयर के साथ, आपका सारा रिटर्न यहां आ रहा है, आपका कंप्लायंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बेनिफिट कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में चले जाते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्र भान जी।
3: मतलब मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्र भान सिंह बोल रहा हूँ। प्रश्न ये है,
1: सवाल पूछे
3: जी, भारत रोजगार रोजगार में कौन कौन से सेक्टर हैं?
1: कौन कौन से
0: इसमें सेक्टर्स? इसमें सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये स्कीम ईपीएफओ के थ्रू भारत सरकार चला रही है, वो भी इसलिए यहाँ पे हमारा आइडेंटिफिकेशन यूएएन के थ्रू करते हैं, कंपनीज कवर्ड हैं, तो बेनिफिट बिकॉज आइडेंटिफाइड लोगों को जाती है, तो जितने भी ईपीएफओ के साथ जुड़े हुए संस्थान हैं उनके थ्रू ये सारा कुछ ये सारी बेनिफिट जाती है।
1: जी अगर किसी के मन में प्रश्न है कि या कोई कर्मचारी है नियोक्ता इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो कोई ऐसा पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर है जिस पर सीधा संपर्क किया जा सकता है?
2: हाँ, तो ये स्कीम के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है हमारा pmvbrv.labor.gov.in, इसमें सारे स्कीम रिलेटेड सारे आपको विशेष उसमें मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर कॉल करके पूछना है तो टोल फ्री नंबर है 1-44-80-1-44-80, इसमें आप मंडे टू सैटरडे 10 to 6 आप कॉल करेंगे तो आपको किसी भी तरह की डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं।
1: जी हाँ, 1-44-80 हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी शंकाओं का जो भी है निवारण पा सकते हैं। पूर्णेंदु जी, आपसे एक जाते जाते यही आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ईपीएफओ के आंकड़ों के आधार पर देखें तो पिछले कुछ वर्षों में औपचारिक रोजगार में क्या परिवर्तन देखने को मिले?
0: मैम, हमारे साथ काफी लोग जुड़े हैं और ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि भारत में एक बहुत मेजर चेंज आ रहा है
1: जी।
0: वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी हुआ करती थी वो काफी फॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में बिकॉज ऑफ दिस स्कीम हम ऐसे उम्मीद करते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ेगी और हम सबों को एक फॉर्मल इकोनॉमी एक विकसित भारत देखने को मिलेगा।
1: जी हाँ, हमें विश्वास है कि आज की चर्चा से युवाओं को रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में

0: उपयोगी ये जानकारी मिली होगी। धन्यवाद आप दोनों का, पूर्णेंदु जी और प्रणय जी आप स्टूडियो में आए और हमारे साथ चर्चा की। श्रोताओं आपका भी धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ जुड़े। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी सोमवार को एक नए मुद्दे के साथ। तब तक प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार। नमस्कार।
2: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं विशेष कुमार शर्मा।

0: दोस्तों आज सोमवार है, रात के 10 बजे हैं और आप जानते हैं कि इस समय आप सुनते हैं अपना पसंदीदा रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। जी हाँ, ये कार्यक्रम हमारा होता है आपके द्वारा फोन पर की गई फरमाइशों के आधार पर। तो आज इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं आज का पहला फोन हमारे किस श्रोता का है और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं सिंधौली मीरगंज जिला बरेली से जीशान वारसी बात कर रहा हूँ।
0: क्या हाल है जीशान जी?
1: सर हाल एकदम बढ़िया है, आप बताएं। आकाशवाणी भी लोग कहते हैं
0: एकदम बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं और आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर तक आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर, ये असल में सुनने की वजह तो सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आप लोग इतने मन से और बहुत खूबसूरती के साथ प्रोग्राम हम तक पहुंचाते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है आपको सुनना।
0: देखिए मजबूरी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है ये, और
1: बिल्कुल
0: सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो बस यही हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: जीशान जी क्या करते हैं?
1: सर मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और उसके साथ साथ आकाशवाणी से कनेक्ट रहता हूँ, आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं हमारे?
1: सर एक तो आपका जो रात में आता है पत्रों पर फरमाइशी प्रोग्राम,
0: रजनीगंधा,
1: उसे भी सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो भी उद्घोषक उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं उनकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब रहती है।
0: जी आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर आज मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का सर कोई भी गीत सुनवा दें।
0: आप गीत के बोल बता दीजिए, जो आपको पसंद है हम वही सुनवाएंगे।
1: सर फिल्म गीत के बोल हैं, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: अच्छा, ये तीन ट्रैक हैं उसमें, आपको मालूम है, एक मोहम्मद रफी का गाया हुआ है,
1: सर
0: एक
1: ये मनहर उदास साहब की आवाज
0: मनहर है। जी जी जी जी, तो ठीक है जीशान जी, मनहर उदास की आवाज में लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।

0: मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गीत, और इसके लिए फरमाइश की थी बरेली से जिशान ने। आइए सुनते हैं अगले कॉलर लाइन पर हैं, कहाँ से हैं और कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: थैंक यू, मैं बोल रही हूँ ललित।
0: ललित जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं दयालबाग से बोल रही हूँ, संत विहार।
0: ललित जी क्या करते हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ।
0: आवाज से पता चल रहा है आपके कि आप कोई ऐसा काम जरूर करती हैं जिसमें कि आप बोलने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्या विषय पढ़ाती हैं आप?
1: मैं हिंदी की टीचर हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। हिंदी की टीचर तो आजकल बहुत कम मिलते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: लेकिन लेकिन एक मैंने देखा है कि आजकल जैसे अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला है या लोग पसंद करते हैं, और ऐसे में हिंदी का टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: हाँ,
0: क्या महसूस करती हैं
1: कहा आपने। और मैं तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो पुस्तकें भी लिखी हैं, तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि हिंदी जन जन तक पहुँचे।
0: बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, और हिंदी में हम जितना काम करें तो एक तरह से यूं मान के चलिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये हमारी पहचान है सर।
0: बिल्कुल। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: मैं 10th, 11th, 12th।
0: अच्छा, अभी आपने कहा है कि कुछ किताबें भी आपने लिखी हैं, तो कौन सी क्लास की किताब लिखी है या कोई पर्सनल अपनी किताब कोई लिखी है?
1: मैंने दो किताबें तो जो है हिंदी के उत्थान के लिए ही लिखी है
0: जी,
1: राष्ट्रभाषा विमर्श और हिंदी ही हमारी मातृभाषा क्यों। इसके साथ साथ मेरी 14 किताबें और लिखी हैं मैंने।
0: की अच्छा, आपके अध्ययन और अध्यापन कार्य में रेडियो का कुछ महत्व है क्या?
1: रेडियो का मेरे जीवन में ही बहुत महत्व है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरा बहुत समय से जुड़ाव रहा है, और घर पे भी काम करते करते मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: आज के इस हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वैसे तो मुझे, मैं सही बात बताऊँ आपको, मेरे को पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल ही तो है फिल्म का है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल।
0: वाकई गीत बहुत अच्छा है, मुकेश की आवाज में है।
1: बहुत प्यारा गाना है
0: जी। ललित जी तो लीजिए, सुनिए आप अपनी।

0: मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ही तो है, और इस गीत के लिए फरमाइश की थी ललित ने दयाल बाग आगरा से। और हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम लालो से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र।
0: नरेंद्र जी, अरे हमारे तो बहुत पुराने श्रोता हैं यहाँ।
1: जी हाँ जी हाँ, बहुत दिनों बाद सर आपसे बात हो रही है, पहली बार हो रही है आपसे इस कार्यक्रम में।
0: अच्छा
1: आते रहा करो सर कार्यक्रम में।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: नरेंद्र जी, क्या करते हैं आप इस समय?
1: सर, मैं कोसी छाता काम करता हूँ कपड़े की कंपनी में।
0: अच्छा, उसमें क्या काम रहता है आपका?
1: जी सर, उसमें मशीन पर रहते हैं, ऑपरेटरी पे
0: अच्छा,
1: कपड़ा डाइंग करे, कलर होता है उसमें।
0: तो जब आप मशीनों पे काम करते हैं तो कुछ सुरक्षा का ध्यान रखते हैं?
1: सुरक्षा सर, हमारी वो ड्रेस मिलती है, पैरों में जूते पहनने के लिए ग्लव्स मिलते हैं, हाथों के लिए, आंखों में चश्मा मिलता है लगाने के लिए,
0: जी,
1: और टेम्परेचर रहता है सर बहुत ऊपर का, पसीना नीचे आ जाता है,
0: गर्मी बहुत ज्यादा रहती है।
1: गर्मी बहुत रहती है, हीटिंग दी जाती है कपड़ों के लिए, उसमें मशीनें बड़ी बड़ी एक एक टन की वॉशिंग मशीनें हैं वहाँ
0: अच्छा,
1: अवेलेबल में भी।
0: तो मशीनों की वजह से, उनकी गर्मी की वजह से आपको भी गर्मी में रहना पड़ता है?
1: जी, रहना पड़ता है, कितना भी उकर लो वहाँ तो गर्मी सर लगेगी, क्योंकि मशीनों का टेम्परेचर तापमान इतना दिया जाता है कि
0: अच्छा,
1: बस पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी।
0: तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत है अपने स्वास्थ्य के लिए भी, तो इसके लिए क्या करते हैं फिर आप?
1: जी सर, समय समय पर वहाँ जैसे कोई दिक्कत रोक टोक नहीं है, समय समय पर जाते रहते हैं पानी वानी पीने के लिए, और अच्छी व्यवस्था है,
0: अच्छा,
1: जैसे कोई दिक्कत है तो ग्लूकोज के पानी भी मिलता है वहाँ, नींबू पानी भी मिलता है दोपहर में सबके लिए, एक
0: अच्छा
1: टंकी भर दी जाती है ठंडे पानी से, नॉर्मल
0: अच्छा
1: पानी, ज्यादा ठंडा भी नहीं है।
0: तो ये कंपनी की तरफ से सारी व्यवस्था होती है?
1: जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर गर्मी तो लगेगी, घर पे भी गर्मी लगती है, वहाँ भी लगती है।
0: अच्छा, हाँ नहीं, ये तो बात बिल्कुल सही है, गर्मी तो, मौसम भी वैसे गर्मी का इस समय तो काफी गर्मी है, धूप भी काफी निकलती है इस समय,
1: जी हाँ
0: तो वैसे भी हमको अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से काफी ध्यान रखना चाहिए, और इन दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए।
1: जी,
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: सर एक गाना है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला, फिल्म
0: फिल्म का नाम बताएंगे?
1: का नाम तो सर पता नहीं, पर
0: फिल्म का नाम हम बता देते हैं, फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
1: ये बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा लगता है।
0: जी।

0: गीत हमने शुरू कर दिया है आपके साथ, और कौन सुनेगा इस गीत को?
1: सर हमारे घर वाले हैं, हमारे भैया जी हैं, बड़े ब्रजमोहन और बच्चे हैं, फैमिली वाले सर, माँ का बाबू जी।
0: अच्छा,
1: एक हमारे दोस्त है सौरभ लवानी भैया कोला से।
0: जी तो ठीक है रेन जी,
1: बात करके बहुत अच्छा लगा सर।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: लीजिए सुनिए अपनी पसंद का जी।

कह दो कि आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की थी लालू से नरेंद्र ने। और आइए अब देखते हैं हमारा अगला फोन कहाँ से है और कौन से गीत की फरमाइश है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो,
1: हेलो।
0: आपको हमारी आवाज मिल रही है?
1: हाँ मिल रही है जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सागर सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: सागर सिंह कुशवाहा।
1: हाँ जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: बसई नवाब दौलतपुर राजस्थान।
0: सागर जी?
1: हाँ जी
0: आप जब भी फोन करते हैं आपका फोन लग जाता है,
1: हाँ जी
0: बहुत सौभाग्यशाली हैं आप।
1: हाँ भाग्यशाली है।
0: हमारे बहुत से श्रोताओं की शिकायत रहती है कि वो फोन करते हैं और फोन नहीं लगता है, लाइन बिजी मिलती है,
1: बिल्कुल
0: और आपके लिए हमेशा लाइन खाली मिलती है। ऐसा क्यों?
1: बिल्कुल नसीब है हमारा।
0: अच्छा
1: हाँ
0: बहुत
1: जी
0: खूब। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं सागर जी?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, तो इन दिनों बहुत गर्मी है, काम चल रहा है इस समय कहीं?
1: काम चल रहा है। सुबह शाम 7 बजे से लगाते हैं, 11 बजे ने बंद कर देते हैं जी। ठेका
0: अच्छा, तो ठेके पर काम करते हैं या अमानी के हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं आप?
1: पे हम कर लेते हैं, अमानी पे भी करते हैं।
0: कितने पैसे लेते हैं एक दिन के?
1: 800 रुपया चल रहा है।
0: ज्यादा नहीं है?
1: ज्यादा नहीं है भाई, यहाँ पर इतनी पैसा है।
0: और समय कितना रहता है काम?

0: करने का
1: 7 घंटे।
0: 7 घंटे।
1: हाँ
0: अच्छा, गर्मियां बहुत ज्यादा है, काम करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
1: बिल्कुल रखते हैं साफ ध्यान। तो
0: कौन सा गीत सुनेंगे सागर जी?
1: कागज कलम दवा के वो कौन सी फिल्म का है?
0: कागज कलम दबात ला,
1: हाँ जी बिल्कुल
0: लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
1: जी
0: फिल्म का नाम नहीं मालूम आपको?
1: नहीं, मेरे हमारे में तुम्हें बता देता पहले ही।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सागर जी फिल्म का नाम हम बता देते हैं। फिल्म का नाम है हम जो है आपको ये गीत सुनवाते हैं। और कौन सुनेगा इस गीत को आपके साथ?
1: मेरे साथ में मेरा दोस्त है एक खाना खत्म
0: नाम बताइए
1: बाबूलाल दोनारी से।
0: भैया सागर जी। देखिए दोस्त आपके साथ में और आपको दोस्त का नाम नहीं मालूम, आप दोस्त से नाम पूछ रहे हैं, ये कैसी दोस्ती है?
1: हाँ तो मेरे साथ में रहता है, ये काम करता है मेरे साथ। अरे मैं दिमाग में दे जाना ध्यान
0: अच्छा
1: निकल जाए दिमाग।
0: चलिए चलिए कोई बात नहीं, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए, गीत चल रहा है, ठीक है।
1: बात करोगे मिस्त्री से मेरे साथी से?
0: लाइए बात करा दीजिए।
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ भाव,
0: स्वागत है आपका हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम बाबूलाल है।
0: बाबूलाल। अच्छा भैया बाबूलाल, अपने दोस्त को समझाइए कि भाई मेरा नाम याद रखा करें, इतनी जल्दी भूल जाते हैं आपके नाम को।
1: आप ऐसा काम के चक्कर में?
0: अच्छा काम में ज्यादा मन लगता है?
1: काम में ज्यादा भी देते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम कोई भी काम करें तो उसे लगन के साथ करना चाहिए, बहुत ही मन से करना चाहिए, ठीक है। चलिए आप भी इसी गीत को सुनिए। ठीक है तो गीत चल रहा है, लीजिए सुनिए आप, ठीक है।
1: ठीक है,
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने।

0: सागर सिंह कुशवाहा की पसंद पर आपने सुना फिल्म हम का ये गीत। और हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आपको कौन सा सुनने को मिलेगा ये तो हमारे कॉलर ही बताएंगे, और कॉलर इस समय लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं लालिमा वत्स।
0: एक बार फिर से बताइए।
1: मैं लालिमा वत्स।
0: लालिमा वत्स कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ जयराम बाग दयालबाग से।
0: आज दयालबाग से बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा क्यों?
1: एक तो छुट्टियाँ भी चल रही है ना।
0: अच्छा छुट्टियों की वजह से। अच्छा तो छुट्टियाँ किस चीज की है, कहाँ पढ़ाते हैं क्या कहीं आप? स्कूल में हैं?
1: मैं खंदौली में टीचर हूँ।
0: प्राइमरी स्कूल में?
1: जी।
0: अच्छा तो स्कूल तो शायद 16 तारीख से खुल गए हैं।
1: नहीं 16 से खुल गए थे, फिर उसके बाद फिर से छुट्टी कर दी गई है टीचर्स की 20 तारीख तक, और बच्चों की 15 से ज्यादा है उनको।
0: क्या ये गर्मी की वजह से कर दी है क्या?
1: हाँ गर्मी की, अब हर साल हुआ करेगी।
0: अच्छा
1: जिस तरह ही जाएंगे बच्चे।

0: सरकार ने ऐसा आदेश कर दिया है कि अब हर साल
1: हाँ
0: कब तक छुट्टी रहा करेगी? 24 जून तक?
1: हाँ 24 जून तक बच्चों की छुट्टी रहा करेगी।
0: अच्छा, कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम आते हैं, इसकी वजह क्या होती है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, मेरे स्कूल में तो जितनों का नामांकन है उससे भी ज्यादा बच्चे आते हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। कुछ स्कूल हैं जहाँ पे नहीं आते, पर हमारे स्कूल में और मेरे आसपास के स्कूलों में भी नामांकन पूरा ही रहता है बच्चों का।
0: जो कुछ स्कूल है उनकी क्या वजह रहती है बच्चों के ना आने की?
1: अब उनके ये रीजन रहते हैं कि दरअसल क्या है, गाँव में तो मम्मियाँ लेके अपने बच्चों को चली जाती हैं अपने मायके, फिर वो एक एक महीने बाद आ रही हैं, शादी है, शादी में चले गए, 10 दिन के लिए चले गए तो बच्चा नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और फिर थोड़ा नामांकन भी कम हो जाता है।
0: तो लालिमा जी, जहाँ तक हम समझते हैं खंदौली भी रूरल ब्लॉक है
1: जी,
0: आपकी पोस्टिंग भी रूरल में ही होगी कहीं?
1: हाँ।
0: तो वहाँ नामांकन इतना अच्छा क्यों है गाँव में?
1: गाँव में एक तो बहुत बड़ा गाँव नहीं है
0: जी,
1: तो मतलब बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे, जागरूक हैं पेरेंट्स, जागरूक हैं
0: जी,
1: बच्चा नहीं आ रहा है तो वो पूरा कारण बता के जाते हैं कि इस कारण नहीं आ रहा है। एक भी बच्चा अगर जैसे मेरे यहाँ भी कोई बच्चा एब्सेंट होता है
0: जी,
1: तो पहले पेरेंट्स मुझे फोन करके बता देते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं इसलिए बच्चा नहीं आ पाएगा, इतने दिन नहीं आ पाएगा। पेरेंट्स
0: तो
1: का जागरूक होना बहुत जरूरी है इस मामले में।
0: आपकी बातचीत से यही निष्कर्ष निकला कि पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए?
1: उसके लिए देखिए अगर बच्चा नहीं आ रहा है, कुछ जैसे पेरेंट्स जागरूक हैं वो तो खुद फोन करते हैं, नहीं है तो हमारे यहाँ से टीचर्स मैं भेजती हूँ स्कूल से, तो
0: अच्छा,
1: टीचर्स उनके घर में जाके संपर्क करते हैं, उनको समझाते हैं। और हमारे यहाँ इतना ज्यादा आया हुआ है बच्चों के गेम्स की किट वगैरह, तीन तीन किट आई हुई हैं, साइंस किट, मैथ किट, ये सब, तो बच्चों का अट्रैक्शन उस तरफ होता है और बच्चे गेम्स खिलाए जाते हैं तरह तरह के, जो उनको घर में नहीं मिल पाते वो स्कूल में आके उनको मिल जाते हैं। हाँ अब बहुत सुधार हुआ है बेसिक तो खास तौर से, अब जाके देखिए इतनी अच्छी रंगाई पुताई वहाँ पर और टाइलीकरण वगैरह सब बहुत अच्छे से है,
0: यानी एक ढांचागत जो विकास है वो काफी हद तक हुआ है।
1: हुआ है बहुत।
0: तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं मुकद्दर का सिकंदर का, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, वो
0: अच्छा,
1: गाना सुनना चाहूंगी।
0: जी जी, और इस गीत को कौन सुनना चाहेगा आपके साथ? नाम ले दीजिए।
1: मेरे साथ चाहत, गजल, अभिषेक जी सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है लालिमा जी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज।

ये था मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। इसे गाया था लता मंगेशकर ने और इसके लिए हमें फोन किया था दयाल बाग आगरा से लालिमा वत्स ने। और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था क्योंकि समय हो चुका है, 10:30 बज गए हैं और आज का ये कार्यक्रम हेलो मेरी

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे विशेष कुमार शर्मा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद राशिद खान का राग हमीर में गाया ख्याल।

शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उस्ताद राशिद खान का गाया राग हमीर में ख्याल। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्रों सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
2: Every decision I've taken, मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण, 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपनी प्रातकालीन सभा के प्रसारणों के साथ प्रातः 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।